मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की नौवीं तिथि, तदनुसार 31 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 39 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम

0: में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.5 ऑर्बिटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में अमरूद का बाग लगाएं विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम अमरूद का बाग लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। अमरूद वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी एवं बलुई दोमट मिट्टी अमरूद की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अमरूद की अनेक किस्में हैं, जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा। इनमें से जो भी प्रजाति का पौधा आपको मिल जाए ले करके लगा सकते हैं। अमरूद के पौधे लगाने का उपयुक्त समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक है। यह समय है जब आप अमरूद की बाग या अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं। बाग लगाने के लिए पहले खेत को जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद 8-8 मीटर की दूरी पर गड्ढे बना लिए जाते हैं। ये गड्ढे 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे होते हैं। गड्ढे बनाते समय ऊपर वाली आधी मिट्टी एक तरफ और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे को भरते हैं। ऊपर वाली आधी मिट्टी 30 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 150 ग्राम लिंडेन चूर्ण, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं और फिर मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। गड्ढे की भराई इस तरह करनी चाहिए कि गड्ढे की मिट्टी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई हो। यदि गड्ढा भरने पर बारिश हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन यदि बारिश न हो तो सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर गड्ढा ज़्यादा बैठ जाता है तो ऊपर से थोड़ा मिट्टी डालकर उसे ज़मीन के सतह में कर लेना चाहिए। इसके बाद पौधे को गड्ढे के बीचों बीच लगा देते हैं। पौधे को मिट्टी में उतनी ही गहराई तक दबाना चाहिए जितनी गहराई तक वह पौधशाला में दबा था। रोपाई करते समय पौधे के चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह दबा कर सिंचाई कर देनी चाहिए। रोपाई करते समय ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, और बदली हुई है या शाम का समय है तो ऐसे समय में ही रोपाई करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। पौधा लगभग 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, जिसमें कलम की गांठ अच्छी तरह जुड़ी होनी चाहिए तथा वह किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। पौधों की रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद अमरूद के बाग की देखभाल करते रहना चाहिए। अच्छे फल और अच्छी गुणवत्ता के लिए पौधों को उर्वरक भी देना ज़रूरी है। 1 से 2 साल पुराने पौधों को 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 110 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से देना चाहिए। फलत वाले पौधों को यानी जो 6 साल से ऊपर हैं उन्हें 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 650 ग्राम यूरिया, 950 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। इन उर्वरकों को 2 बार में जुलाई माह में और सितंबर अक्टूबर माह में देना चाहिए। गोबर की खाद की संपूर्ण मात्रा जून माह में ही दे दी जाती है। उर्वरकों को पौधों के चारों तरफ तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके फैलाव के नीचे देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक देने के बाद हल्की गुड़ाई करके उन्हें मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। कभी कभी अमरूद के पौधों पर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए 450 ग्राम जिंक सल्फेट व 300 ग्राम भुजा हुआ चूना को लगभग 75 लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर मार्च अप्रैल माह तथा जून जुलाई माह में छिड़काव करना चाहिए। पुराने व फलदार वृक्ष।

0: गाछों की सिंचाई बरसात के बाद शुरू करते हैं। फलदार पौधों को अक्टूबर से जनवरी माह तक 2-3 सिंचाई कर देनी चाहिए। छोटे पौधों को नवंबर माह से फरवरी माह तक 1-1 माह पर तथा मार्च से जून तक 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अमरूद की बागवानी करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अमरूद का बाग लगाएं विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

भक्त मां को प्रातःकाल जागने की विनती करता है। भक्तों की टोली मां के प्रातः दर्शन को आतुर है। हे मां, अब शीघ्र दर्शन दो।

भक्त प्रभु को अपने इस नश्वर शरीर में ईश्वर के अंश के रूप में महसूस करता है। इस तन में प्रभु श्री राम और श्याम का निवास होता है, जो इस शरीर का संचालन करता है। ऐसे प्रभु को शत शत नमन है।

0: आराधना कार्यक्रम में अभी आपने अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, अनूप जलोटा और बागेश्वरी देवी के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। आराधना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक है भारत की अस्मिता।
1: स्टेशन पर एक तांगा, उसमें बैठने वाली दो सवारियां, एक मैं और दूसरा एक सेठ नुमा यात्री। सेठ जी पीछे और मैं आगे तांगे वाले के बगल में बैठा। मध्य जनवरी की ठंड कड़ाके की थी, सवेरे की ठंडी हवा। तांगा मुश्किल से 5 मिनट चला होगा कि एकाएक रुक गया। रेलवे का फाटक था, कोई ट्रेन गुजरने वाली थी। फाटक बंद, घोड़े की चाल बंद। फाटक पर प्रकाश का प्रबंध था। मैंने घोड़े और तांगे वाले पर नजर दौड़ाई। घोड़े की जो शारीरिक स्थिति थी, उससे बदतर हाल था तांगे वाले का। वस्त्राभाव में सिहरन महसूस कर रहा था। टूटी चप्पल, मैला पाजामा, कटी बाहों वाला एक स्वेटर कुर्ते की गंदगी को छिपाने में असमर्थ था। सबके ऊपर एक चकत्तीदार सूती चादर। मैंने अनुभव किया कि सर्दी से बचाव के लिए वो मुझसे सटने का प्रयास कर रहा है। मैंने जानबूझकर अपनी चादर उसकी ओर थोड़ी ढीली कर दी और उससे एक दो बातें पूछी। केवल इतना ही जान पाया कि स्टेशन से शहर का भाड़ा प्रति सवारी 2 रुपए लेता है और केवल 4 सवारियां बैठाता है। आज का दिन शुभ नहीं रहा। केवल 4 रुपए से बोहनी और ठंडक दिल हिलाओ। सेठ जी पीताम्बरा पीठ के सामने उतर गए। मैंने कहा, आपके पूरे तांगे का किराया 8 रुपया हुआ, 2 सेठ ने दिया, 5 मैंने, अब भी आपको 1 रुपए की कमी है। अरे नहीं बाबू, मैं फी सवारी किराया लेता हूँ, पूरे तांगे का नहीं। 2 रुपए आपके भाड़े के रहे, 3 रुपए वापस करने हैं, सो कोई बंदोबस्त करना है। लेकिन मैं तो आपको 5 रुपए देना चाहता हूँ, मुझे वापस नहीं लेना है। ऐसा नहीं हो सकता बाबूजी, मेरे पिता ने मुझे कृपा की भीख लेने से मना किया है। हम सेवक हैं, सेवा के बदले में जो पारिश्रमिक निश्चित है उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा लिया तो मेरा सेवा धर्म चौपट हो जाएगा। समझे बाबूजी? ठंड तेज है, सामने चाय की दुकान है, अगर कहें तो 1 प्याली चाय पीकर अपने को गर्मा लूं। जब गर्मा कर वो थोड़ा आराम में आया तो मुझसे बोला, बाबूजी आदमी को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। मेरे पिताजी संबंध में कहानी सुनाया करते हैं, सुनिएगा। हाँ हाँ सुनाओ, चाय और तुम्हारी कहानी दोनों का आनंद साथ साथ चले। आनंद नहीं बाबूजी, सोचने की बात है। मुकाबला था एक याचक बहुरुपिया का एक बड़े राजा से। कहानी यूं है, राजा साहब के दरबार में बहुरुपिया आया, निवेदन किया, बहुरुपिया हूं, रूप बनाना चाहता हूं सरकार। बनाओ ना, लेकिन ऐसा बनाना कि तनिक पहचान ना आए। राजधानी में जोरों की चर्चा फैली। नदी के किनारे एक सिद्ध संत आया है जो पैसे को हाथ से नहीं छूता। स्नानार्थी और दर्शनार्थी उसके सामने हर तरह के सिक्के डालते जिन्हें वो पैर के अंगूठे से हटा देता। राजा ने जब ये जाना तो साधु को चैलेंज देने की ठानी। उसके सामने बिछ गए शाही बिछौने, उन पर बिखेर दिया गया सारा राजकोष। राजा हाथ जोड़कर साधु के सामने खड़ा था, बोला, महात्मन ये सारा कोष आपके चरणों में समर्पित है। तू कौन है? इस भूभाग का राजा? मैं ये कोष यदि स्वीकारूं तो तू राजा के कर्तव्य का कैसे निर्वाह करेगा? ले जाए से, इससे प्रजा का हित साधन कर। मैं साधु हूं, ये मेरे किसी काम का नहीं। मन मारकर राजा अपनी प्रभुता समेटे राजमहल को वापस गया। साधु भी लापता हो गया। राज दरबार चालू था। याचक बहुरुपिया हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा था। राजा ने पूछा, तुमने रूप बनाया? हाँ अन्नदाता, नदी तट का साधु मैं ही तो था। राजा फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखने लगा। तुम ही थे, करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे चरणों पर थी, ठुकरा दिया, क्यों? अन्नदाता, मैंने साधु का रूप बनाया था। रानी और राजा ने उस रूप के सामने सिर झुकाए थे। साधु का रूप बनाकर यदि माया समेटता तो साधु कहाँ रह जाता? मैंने कांचन का स्पर्श नहीं किया, साधु का धर्म निभाया। समझे बाबूजी?

0: धर्म बड़ी चीज है, ये रुपए पर बेचने की वस्तु नहीं है। मैंने चाय वाले को 1 रुपया चाय की कीमत दी, ये भी उसे गवारा नहीं था। बोला, अठन्नी का भी एहसान कम नहीं होता, आपने मेरी चाय के पैसे दिए, चलिए आपकी अटैची आपके घर पहुंचा दूं। मैं एक टक उसकी ओर देखता रहा जब तक कि वो अपने तांगे के साथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। सोचता हूं, क्या अपनी संस्कृति की अस्मिता उसी तांगे वाले पर टिकी हुई है?
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था भारत की अस्मिता। आलेख कमलेश रॉय हृदयेश का था और वाचन स्वर हीरा चड्ढा का। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: जब भी हार्ट डिजीज या हृदय रोग के बारे में बात करते हैं तो आप ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं वो जो पैदा होने से बच्चे के साथ है, जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, जो विद टाइम बच्चे या बड़े को आती है उनकी गलत शैलियों के वजह से। सो आज का फोकस है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के डाटा के हिसाब से हर 1000 पैदा हुए बच्चे में 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वो डिजीज जिसमें बच्चा नीला पड़ता है और एक वो जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। पैदा हुए 1 दिन के बच्चे में भी ये नीलापन दिखता है, और नहीं तो ज्यादातर 6 महीने से 1 साल के बीच में वो नीलापन दिखने लगता है। सो अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, बच्चा आपका नीला पड़ रहा है, तो सबसे पहला काम करना है बच्चे को कंधे पे रखना है और बच्चे के दोनों घुटने को मोड़ के उसके छाती में चिपका देना है। तो इससे जो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है जिसमें बच्चा नीला पड़ता है, उसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। उसका एक ब्रॉड टाइप से ये ट्रीटमेंट होता है, बट ये बोलते हैं डेफिनेट ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट जब तक बच्चा आपका हॉस्पिटल पहुंचे उस बीच में ये काफी राहत दे सकता है आपके बच्चे को। तो इसको 2 पार्ट में आप बोल सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, मतलब डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप का यूज करके देखेगा, दूसरा बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी, जो मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट है इन सब डिजीजेस का, वो है इकोकार्डियोग्राफी, जो एक ट्रेन बंदे से ही करवाना बेटर रहता है, नहीं तो बहुत सारी डायग्नोसिस मिस हो जाती है और बाद में पता लगती है। तो एक तो हमने आपको बताया बच्चा जिसमें नीला पड़ता है, अगर आपका बच्चा नीला नहीं पड़ रहा है और बच्चा अपनी एज के कंपेरिजन के बच्चों में आपको कमजोर दिखता है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, और छोटे बच्चे अगर हैं 1 साल के नीचे, तो माँ की कंप्लेन रहती है बच्चा दूध नहीं पीता है या पी के बीच में छोड़ देता है, या तो बच्चे के माथे पे पसीना आता है दूध पीते समय, या बच्चे को निमोनिया हो रहा है, या बच्चा आपको सुस्त दिखता है। अगर ये सब कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं तो आपको जरूर से इवेल्युएट करवा लेना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट से। देखिए, जो हमने इकोकार्डियोग्राफी की बात की, तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें 18 से 22 सप्ताह के बीच में मां के पेट के अंदर बच्चे के हार्ट की जांच की जाती है, बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, वो सारे लोगों में प्रिस्क्राइब नहीं होता है। ऑप्स गाइनी के हिसाब से अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास फीटल इको करने के लिए भेजते हैं, बट आप ब्रॉडली देखेंगे तो अगर मदर को डायबिटीज है या कोई फैमिली में आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हो, या तो आजकल IVF से जो बेबीज होते हैं वो प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, उन सब कंडीशन में हम ज्यादातर बोलते हैं कि हर पेरेंट को 18 to 22 वीक्स के बीच में फीटल इको करवा लेना चाहिए। फीटल इको बहुत डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, बट सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब जो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बच्चे की जान जाने वाली जो भी बीमारियां हैं, वो ज्यादातर टाइम पता लग जाती हैं। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों डिजीजेस ऐसी हैं जो या तो टाइम पे पता लग सकती हैं या टाइम जाने के बाद पता लगती हैं। आपका जो क्वेश्चन है, अगर उसको हम कंजेनाइटल के हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जो 1 या 2 साल के अंदर पता नहीं लगता है। 2 साल के बाद आप किसी वजह से पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को ले गए तो वो स्टेथोस्कोप से सुन के बोलता है मरमर है, बट बच्चा आपका अमूमन नॉर्मल दिखता है। उस कंडीशन में इको करने पर ज्यादातर बच्चे को होल या उसकी वैल्व की सिकुड़न पाई जाती है। और जो आप अक्वायर्ड डिजीजेस बोल रहे हैं, जिसमें लेटर स्टेज में जाके हार्ट अटैक होता है, तो बहुत सारी डाटास के हिसाब से जो उसकी सीडिंग होती है वो 4 to 5 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर छोटे बच्चे को भी ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक नहीं होना चाहिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए, और आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी लिमिटेड हो गई और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वो पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ये सोचे कि 60 साल के आदमी को हार्ट अटैक होता है, बचपन में हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि जो चीजें हैं वो काफी टाइम के पहले शुरू हो जाती हैं। अगर हमने शुरू से ही अपना ध्यान रखा तो लेटर स्टेज में वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। कि अक्वायर्ड हार्ट डिजीज जनरली बचपन में नहीं पता लगेगी, आपको लेटर स्टेज में ही जाके पता लगती है, बट एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इसके बारे

0: मैं हम स्पेसिफिकली बोलना चाहेंगे जिसमें वाल्व में सिकुड़न होती है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे एथलीट होते हैं या कोई प्लेयर है, ग्राउंड में सडन डेथ हो जाती है, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो सडन डेथ हार्ट अटैक होती है। तो ये हम बोलना चाहेंगे कि ज्यादातर ऐसा नहीं है कि वो हार्ट अटैक ही होता है, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं सडन डेथ के। हार्ट अटैक उसमें से एक कॉज है। दूसरे कॉजेज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकते हैं जिसमें वाल्व में सिकुड़न होती है, स्पेशली लेफ्ट साइड की वाल्व जिसको aortic stenosis बोली जाती है। अगर वो सिकुड़न बहुत सीवियर होती है तो सडन डेथ का कॉज हो सकती है। दूसरा होता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया जिसमें आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में गड़बड़ी होती है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आपने जन्मजात हृदय रोग कारण और बचाव के उपाय विषय पर डॉक्टर प्रतिभा राय से ये जानकारी सुनी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना यह है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को यह भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 गजलें पेश करेंगी बेगम अख्तर। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:30 पर आप सुनेंगे रश्मि चौधरी के स्वर में भजन और गीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे संकर नस्ल की गायों में गर्भधारण की समस्या विषय पर डॉक्टर पवन कुमार यादव से बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे देवता दीन सरोज का गाया लोकगीत। इनके गाए लोकगीत आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे आज की बात, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुनर से रोजगार तक, इस विषय पर नेहा मिश्रा की वार्ता। यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे आज दिन 2:30 पर। आज आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीत। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर बहनें सुनेंगी स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए नए अवसर विषय पर महिला उद्यमी राखी जायसवाल से बातचीत। साथ ही बहनें सुनेंगी सेहत ज्ञान, जायका और गृहलक्ष्मी टिप्स। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12:00। आपके पत्र आपके गीत आप सुनेंगे दिन 11:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार सुनिए दिन 10:00। मधुरिमा सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे सुबह 7:00। इसके अतिरिक्त फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:00, शाम 6:10 पर, शाम 7:00, शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:15 रसमाधुरी में। साथ ही रात 10:00 फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे आज रात 9:30। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिलाएं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 गजलें पेश करेंगी बेगम अख्तर। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:30 पर आप सुनेंगे रश्मि चौधरी के स्वर में भजन और गीत। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे संकर नस्ल की गायों में गर्भधारण की समस्या विषय पर डॉक्टर पवन कुमार यादव से बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे देवता दीन सरोज का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे आज की बात, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुनर से रोजगार तक, इस विषय पर नेहा मिश्रा की वार्ता। यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 2:30 पर। आज आप सुनेंगे

भोजपुरी फिल्मी गीत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननम् अपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलियर दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेश मंत्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86+8,000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27,200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणां 80% स्नातक छात्रान् संबोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या

0: प्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: सियाप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
3: ओए होए होए, डेथ ही होगी।
4: मैं सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हूं, मुझे पता चला।
0: हां जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और बढ़िया हैं। भाई साहब, आज तारीख हो चुकी है 31 अगस्त, यस, यानी अगस्त के महीने का आखिरी दिन। मौसम में हल्की सी सिहरन और घाटों पर सुबह की ताजी हवा। सच कहूँ तो आज की सुबह एक कड़क बनारसी चाय जैसी है, एकदम लाजवाब, है ना? लेकिन एक मिनट, लाजवाब आज का दिन किसी और रीजन से भी है। जी हाँ, सावन की फुहारों के बाद अब आगमन हो चुका है पवित्र भादव मास का, और भादव का नाम आते ही बनारस के जहन में क्या गूंजता है? कजरी, यस। रिमझिम फुहारों के बीच पिया के इंतजार और विरह मिलन के सुरों में ढली हमारी अपनी लोक गायकी कजरी की ये बयार। कजरी सिर्फ गीत नहीं है, ये बनारस के प्राण है, हमारी मिट्टी की खुशबू है जो पीढ़ियों से सावन भादो के गीतों में पिरोई जाती रही है। आज 2026 में जब तकनीक बदल गई है, डीजे और पॉप संगीत का शोर है, तब भी भादो की इस धूप छाओं में एक पारंपरिक कजरी का ठेठ अंदाज हमारे दिलों को सुकून दे जाता है। तो आज चाय की चुस्की के साथ अपने भीतर के बनारस को जगाइए, किसी पुराने रिकॉर्ड या लाइव कजरी के सुरों से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, एक एहसास है, और भादों में कजरी उसका श्रृंगार है। काशी की लोक परंपरा में अखंड सुहाग के लिए मनाया जाने वाला पर्व कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया यानी कि आज मनाया जा रहा है। कल रविवार की रात महिलाओं ने पूरी रात रथ जगा किया, और आज भोर में सूर्योदय के पूर्व जलेबा खाकर निराजल व्रत जो है महिलाओं का आरंभ होगा। इसके लिए शहर से लेकर गांव तक के बाजारों में कल शाम से ही जलेबा की बहुत सी स्थायी अस्थायी दुकानें लग गईं। पूरी रात जलेबा छनता रहा और लोग इसका आनंद लेते रहे। जलेबा के साथ ही अन्य मिष्ठान देवी देवताओं को अर्पित किया गया, और कजरी तीज के दिन आज यानी कि सोमवार को जौ से उपजी जरई को देवी देवताओं को चढ़ाकर स्वयं और अपने परिवार के लोगों के कान पर रखकर स्वर्व मंगल की कामना की जाती है। महिलाएं आज के दिन मां आदिशक्ति के शक्तिपीठों में से एक मां विशालाक्षी मंदिर शक्तिपीठ की दर्शन यात्रा करती हैं। आप सभी को कजरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उठिए, बिस्तर छोड़िए और हाथ में चाय का कुल्हड़ थाम कर इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए। अगर आप इस वक्त हमें वॉक करते हुए सुन रहे हैं तो जरा कान लगाकर सुनिए कि वो सामने पार्क में कैसी आवाज आ रही है। अरे भाई, वहाँ चल रही है दिन की सबसे बेहतरीन और मुफ्त दवाई। जी हाँ, लाफ्टर थेरेपी, यस। और देखिए, आप इस बात से ताल्लुक जरूर रखते होंगे कि भरपेट हंसी जो होती है वो एक जादुई दवा है। इंसान दुनिया में आने के बाद सबसे पहले रोता है और फिर सीखता है हंसना। जी हाँ, हंसी ही उसे बाकी लोगों से अलग करके सही मायनों में इंसान बनाती है। मानव बने रहने और जीवन को भरपूर जीने के लिए हंसते रहना बहुत जरूरी है। एआई की आहट से लोगों में भयंकर खलबली मच चुकी है, उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि एआई चाहे जो भी कर ले वो हंस नहीं सकता। मनुष्य और कंप्यूटर में क्या फर्क है? यही कि मनुष्य हंस सकता है और कंप्यूटर नहीं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अब लोगों को हंसने के लिए खास प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है। आजकल जगह जगह लाफ्टर थेरेपी के क्लब और क्लासेस चल पड़ रहे हैं। हंसी इंसान को मिली सबसे बड़ी देन है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। हंसना जो है ना, हमें मुफ्त में मिला है, शायद इसीलिए हमें उसकी कद्र नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप 7 दिन तक बिल्कुल नहीं हंसे तो कमजोर हो जाएंगे। जरा याद कीजिए कि आखिरी बार खुलकर आप कब हंसे थे। वो हंसी जिसमें पेट में बल पड़ जाए, आंखें भर जाएं और दुनिया की सारी चिंताएं हवा हो जाएं। हंसना सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये शरीर और मन के लिए एक जादुई

0: टॉनिक है। विज्ञान भी यही मानता है कि जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन निकलते हैं। सोचिए, जो काम बड़ी बड़ी गोलियां नहीं कर पाती, वो काम एक प्यारी सी हंसी चुटकियों में कर देती है। आपके दिल की सेहत सुधारती है और आपके ना चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है। इस जादुई दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हाँ, अगर आप अकेले में हंसेंगे तो लोग शायद आपको पागल समझें। इसलिए खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए, जोक सुनाइए, पुरानी यादें ताजा कीजिए या फिर बस यूं ही मुस्कुरा दीजिए। तो देर किस बात की, छोड़िए अपनी सारी फिक्र, उठाइए अपना फोन और अपने किसी खास दोस्त को सुना दीजिए एक बड़ी हंसा चुटकुला। तो भाई, वादा कीजिए कि अब जो है आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि ये एक अनपेड थेरेपी है। गुड मॉर्निंग बनारस। हां जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 31 अगस्त 2026 और दिन है आज सोमवार का। तो आइए सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में आज खास। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज की ओर से महिलाओं और उनके एक सहयात्री के निशुल्क यात्रा के आदेश के बाद 3 दिन यानी कि 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक कुल 90,000 महिलाओं ने बस में निशुल्क सफर किया। जी हाँ, महिलाओं को यात्रा के लिए 0 टिकट जारी किया गया था। है ना, कितनी अच्छी बात ये। इसके साथ ही आपको बता दें कि नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की ओर से एक विशेष लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर 0542228284 नंबर एक बार फिर से सुनिए 0542228284 जारी किया गया है। इस पर नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से पैसा मांगने वालों की शिकायत की जाएगी। नगर आयुक्त ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वो किसी भी स्तर पर होने वाले अवैध वसूली के खिलाफ खुलकर सामने आए और तत्काल इस नंबर पर जानकारी दें। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अपने प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने अलर्ट के बाद स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने भी नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना प्रोटोकॉल की तर्ज पर स्वाइन फ्लू मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जाएगा। अगर किसी मरीज की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके संपर्क में आने वालों की भी जांच की जाएगी। इसमें स्वास्थ्य टीम बीमारी के संभावित कारणों की जानकारी के लिए ट्रेवल हिस्ट्री का भी पता लगाएगी। CMO डॉक्टर NP सिंह का कहना है कि कोरोना काल की तरह सरकारी अस्पतालों से सैंपल एकत्र करके पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए IMS-BHU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजा जाएगा और यहां लैब में जांच के बाद RT-PCR रिपोर्ट मिलेगी। और मौसम का हाल आपको अगर बताएं तो लगातार तीसरे साल अपने शहर काशी में भादों के दूसरे दिन का स्वागत गरजते मेघों, कड़कती बिजली और तेज बारिश के साथ हुआ। कल रविवार को भोर और शाम को मिलाकर करीब 25 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं भादों के दूसरे दिन के साथ एक क्रोनोलॉजी भी जुड़ गई। पिछले 2 साल भादों के दूसरे दिन 12 अगस्त 2025 और 22 अगस्त 2024 को इसी अंदाज में बिजली कड़कने के साथ 30 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई थी। काशी में कल रविवार की शाम सबसे ज्यादा बारिश हरोहा में 15.5 मिलीमीटर हुई। इसके पहले दोपहर भर तीखी धूप के चलते उमस ने हल्कान कर दिया था। पारा 32 डिग्री सेल्सियस के पार जाने लगा था, मगर 3:30 बजते ही अचानक बादल घिरने लगे और अंधेरा छा गया। घने मेघों की गड़गड़ाहट के बीच 3:56 पर जोर से कड़कती बिजली ने काशीवासियों को सहमा दिया और इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रही। और आज भी मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने छाते और अपने रेनकोट्स अपने साथ रखिएगा। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 31st of August। आपको बता दें कि आज के दिन ईयर 1881 में पहली बार आधिकारिक तौर पर टेनिस चैंपियनशिप अमेरिका में खेली गई थी। और आज के दिन 1995 में दुनिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मॉडल कार को प्रदर्शित किया गया था। और अगर बर्थडेज की बात की जाए तो आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ। और इसके साथ ही बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार राव का आज ही के दिन ईयर 1984 में जन्म हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। And now, Banaras, let's move on to your favorite segment.
1: बात जरूरत की।

देखिए, बारिश के मौसम में इंटरनेट और वाईफाई से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है, कभी वीडियो कॉल अटकने लगते हैं, तो कभी ओटीटी पर वीडियोस बार बार बफर होते हैं। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल पेमेंट जैसे जरूरी काम बाधित होते हैं। दरअसल भारी बारिश, लगातार नमी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और केबल डैमेज जैसी वजहों से इंटरनेट नेटवर्क और उससे जुड़े उपकरणों में खराबी की संभावना बढ़ जाती है। कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में खराबी या सर्विस से जुड़ी समस्या के कारण भी कनेक्शन कमजोर हो जाता है। वहीं घर में राउटर की खराब पोजीशनिंग, वायरिंग या तकनीकी खराबी भी स्लो इंटरनेट की वजह बन सकती है। हालांकि कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर बारिश के मौसम में इंटरनेट और वाईफाई की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसलिए आज इस सेगमेंट में बारिश में होने वाली वाईफाई की प्रॉब्लम्स और उसके समाधान पर हम बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि बारिश में इंटरनेट और वाईफाई की प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है और आंधी बारिश में बेहतर इंटरनेट सर्विस के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, लगातार बारिश और नमी से केबल कनेक्शन बॉक्स और नेटवर्क उपकरण में खराबी आ सकती है। तेज बारिश, जलभराव या पेड़ गिरने जैसी समस्याओं से इंटरनेट केबल और फाइबर लाइन डैमेज हो सकती है। बारिश और बिजली गिरने के दौरान वोल्टेज में उतार चढ़ाव से राउटर या दूसरे उपकरण खराब हो सकते हैं। खराब मौसम में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क या स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी प्रॉब्लम भी आ सकती है और कई बार राउटर की गलत पोजीशनिंग, खराब वायरिंग के कारण भी वाईफाई स्लो हो सकता है। बारिश में वाईफाई क्यों परेशान करता है, तो इसके कई कारण हैं। केबल या जॉइंट डैमेज होना, फाइबर लाइन में पानी घुसना, बिजली बार बार ट्रिप होना, राउटर ओवरहीट या शॉर्ट होना, तेज हवाओं से तार टूटना, नेटवर्क उपकरण खराब होना, अंडरग्राउंड केबल डैमेज होना। बारिश में सबसे कॉमन इंटरनेट प्रॉब्लम जो होती है वो होती है इंटरनेट स्पीड स्लो होना, बार बार नेट डिस्कनेक्ट होना, वीडियो कॉल फ्रीज होना, ओटीटी यूट्यूब बफर होना, मोबाइल डेटा स्लो होना, नेटवर्क गायब हो जाना, कनेक्टिविटी लिमिटेड होना और राउटर बार बार रीस्टार्ट होना। बारिश का असर जो होता है वो फाइबर इंटरनेट पर भी पड़ता है। इसमें दिक्कत आमतौर पर केबल के कनेक्शन प्वाइंट, पावर सप्लाई, ज्वाइंट या दूसरे नेटवर्क उपकरणों में पानी और नमी पहुंचने से होती है। इसके अलावा तेज बारिश, सड़क खुदाई, जल भराव या पेड़ गिरने से केबल डैमेज होने पर भी इंटरनेट बाधित हो सकता है। बारिश का असर मोबाइल डेटा पर इसलिए पड़ता है कि वो मोबाइल नेटवर्क रेडियो वेव्स पर काम करता है। तेज बारिश हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो लिंक को प्रभावित करती है, इससे कनेक्टिविटी पर असर पड़ता है। टावर की बिजली सप्लाई या बैक हॉल नेटवर्क में दिक्कत आने से भी मोबाइल इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है। टावर से दूरी और नेटवर्क पर ज्यादा ट्रैफिक होने से समस्या बढ़ सकती है। नमी यानी कि ह्यूमिडिटी वाईफाई राउटर को नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, लंबे समय तक नमी रहने से राउटर के अंदर कंडेंसेशन हो सकता है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जंग या शॉर्ट सर्किट का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए बारिश में राउटर को सूखी और हवादार जगह पर ही रखना चाहिए। बारिश में वाईफाई स्लो हो जाए तो सबसे पहले राउटर को रीस्टार्ट करें और कुछ मिनट बाद इंटरनेट स्पीड चेक करें। अगर समस्या बनी रहे तो सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत करें, साथ ही स्पीड टेस्ट करें, वायर चेक करें और अपना जो मॉडम है उसको ऑन या ऑफ करें। बेहतर इंटरनेट सर्विस के लिए सिर्फ अच्छा प्लान लेना काफी नहीं होता है, राउटर और नेटवर्क उपकरणों की सही देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। बेहतर इंटरनेट सर्विस के लिए राउटर सूखी जगह पर रखें, बैकअप के लिए यूपीएस लगाएं, सर्ज प्रोटेक्टर इस्तेमाल करें, राउटर बीच बीच में रीस्टार्ट करें, फाइबर वायरिंग रेगुलर चेक करें, ढीले केबल कनेक्शन ठीक कराएं, एक्स्ट्रा डिवाइस डिस्कनेक्ट करें, गेमिंग के लिए लैन केबल यूज करें, राउटर का फर्मवेयर अपडेट रखें, राउटर को ओवरहीटिंग से बचाएं, बड़े घर में वाईफाई एक्सटेंडर लगवाएं और कस्टमर केयर नंबर सेव करें। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में आता है कि लैन और वाईफाई में क्या अंतर होता है और दोनों में से क्या यूज करना बेहतर होता है। तो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये वायर्ड कनेक्शन है। इसका इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर ज्यादा स्थिर, तेज और कम लैग वाला होता है। ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो मीटिंग और हैवी फाइल डाउनलोड के लिए ये बेहतर माना जाता है। और वाईफाई नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क होता है, इसमें बिना तार के कई डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं और रोजमर्रा के यूज के लिए ठीक भी रहता है। तो अगर नेटवर्क में ज्यादा स्थिरता चाहिए तो आप लोकल एरिया नेटवर्क बेहतर विकल्प है आपके लिए। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से राउटर, मॉडेम और ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल खराब हो सकते हैं। अचानक हाई वोल्टेज आने पर सर्किट जलने का रिस्क रहता है, इसलिए मॉनसून में सर्ज प्रोटेक्टर और यूपीएस का इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है। बिजली गिरने से पावर लाइन या नेटवर्क केबल के जरिए सर्ज आ सकता है, इससे डिवाइस खराब हो सकती है, इसलिए सिर्फ राउटर बंद करने की बजाय उसका पावर प्लग भी निकाल दें। पुराने हार्डवेयर में हीट मैनेजमेंट कमजोर होता है, ये नए नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को भी सही तरीके

0: सपोर्ट नहीं कर पाता, अगर राउटर बार बार हैंग हो रहा है, गर्म हो रहा है या डिस्कनेक्ट हो रहा है तो उसे बदल देना चाहिए। मॉनसून में वाईफाई राउटर रखने की जो सबसे सही जगह है वो सूखी और हवादार होनी चाहिए, फर्श से थोड़ी ऊंचाई पर रखना चाहिए, खिड़की या बालकनी के पास रखना चाहिए, पानी टपकने वाली जगह से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, माइक्रोवेव और हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखना चाहिए और घर के सेंटर में रखना चाहिए ताकि सिग्नल जो है वो बराबर फैले। मॉनसून में राउटर को सुरक्षित रखने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर इस्तेमाल करें, यूपीएस या मिनी यूपीएस लगाएं, वायरिंग को नमी से बचाएं, राउटर को कपड़े से ढककर ना रखें, लंबे समय तक इस्तेमाल ना हो तो प्लग निकाल दें। घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वाईफाई सिग्नल को कमजोर करती हैं, जैसे मोटी दीवारें और मेटल की अलमारी सिग्नल को ब्लॉक करती है, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ डिवाइस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नेटवर्क में इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, बड़े शीशे और पानी की टंकियां भी सिग्नल कमजोर कर सकती हैं, इसलिए राउटर को खुली जगह पर रखना ज्यादा बेहतर है। वीडियो कॉल अगर बार बार अटक रही है तो उसके लिए आपको दूसरे ऐप्स को बंद रखना चाहिए, कैमरा क्वालिटी कम करना चाहिए, वाईफाई के करीब बैठना चाहिए, नेटवर्क बदल कर देखना चाहिए और बैकग्राउंड डाउनलोड रोकना चाहिए। बार बार वाईफाई डिस्कनेक्ट हो तो सबसे पहले राउटर का फर्मवेयर अपडेट करें, कई बार पुराने सॉफ्टवेयर की वजह से नेटवर्क अस्थिर हो जाता है, राउटर की पोजीशन बदलना और चैनल सेटिंग अपडेट करना भी मदद कर सकता है। अगर घर बड़ा है और सिग्नल हर जगह नहीं पहुंचता है तो वाईफाई एक्सटेंडर लगाएं।
1: बात जरूरत की।
0: सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pklda@varanasi.gmail.com। मेरा नाम है सरा सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी भी किसी का दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:17 हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर्स से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर दिया गया। यह विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह 35वां वैश्विक सम्मान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और वैश्विक मंच पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को एक और मान्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति सेट के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश की हजारों बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान

0: पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन का आग्रह भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा तय की है।
2: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
0: अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए।
0: मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने कल लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास था। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य भर में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। वहां गंगा नदी चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य भर में 5 सितंबर तक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी तरफ से जा रही कार से जा टकराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार के अंदर फंसे सभी 4 लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहीर भैरव। आपके साथ तबला संगति पंडित किशन महाराज की है, तो आइए सुने पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहीर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आपने पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहीर भैरव सुना। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। बीटी वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है, जनधन बैंक खाता क्या मिला,

0: फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडुंगू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों

0: लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
2: आईएमडी ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केवंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
3: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली।

0: मिली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0414 0112331 4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup.

तुमको निशाना बनाया। और ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिजिस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वजीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेग अले शोविच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज रक्स का भी एहतमाम किया गया।

0: सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया है कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन में अमरीका के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिजाइल दागे। दोनों तरफ के इन हमलों से महाज आराई में फिर से शिद्दत आ गई है। इससे कबल अमरीकी फौज ने आबनाए हुरमुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ईरान को ये सख्त वार्निंग जारी की है कि इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने में मुलविस किसी भी बहरी जहाज या कश्ती को बिला ताखीर और मुनज्जम अंदाज से तबाह कर दिया जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बैंकिंग और कर्ज की फराहमी के जरिए माली शमूलियत में इजाफे और शहरियों को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिक्किम निशानेबाजों ने 13वीं शुमाल मशरकी जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम दी है। ये चैंपियनशिप कल आसाम के शहर गुवाहाटी में इख्तिताम पजीर हुई। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर मुकाबले में इनफरादी जुमरे के तहत कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तनाकू मुरहिस ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान के दौरे की तकमील की खबरें सरेबख्श शाये की हैं। अखबार इनकलाब के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान यूरेनियम की सप्लाई का मुआहदा। वजीर आजम मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर भी आज के अखबारात में नुमाया है। जनाब मोदी आज शंघाई तआवुन तंजीम में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि वो किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक में आज चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अखबार इनकलाब के मुताबिक सियासी जमातों के नकद अतियात के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दरख्वास्त में इनकम टैक्स कानून की उस शिक को चैलेंज किया गया है जिसमें सियासी जमातों को 2,000 रुपये से कम के नकद अतियात गुमनाम तौर पर वसूल करने की इजाज़त है। इसी अखबार ने एक खबर यह भी खास तौर पर शाये की है कि दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी। अगर किसी वोटर या उसके किसी जानने वाले का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है जबकि 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है मधुनिमा कार्यक्रम। मधुनिमा कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
3: बोल वाला, किसिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।
4: बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे।
3: अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा।
4: कैसे?
3: मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं।
4: अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला।
3: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो

0: पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: श्रोताओं, बारिश आजकल बनारस वालों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पिछले कई दिनों से कई बार तो तेज और कई बार बारिश की रिमझिम फुहारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से वातावरण ठंडा और खुशनुमा हो गया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मधुरिमा कार्यक्रम अपने दोस्त प्रशांत परांजपे के साथ।

दोस्तों, पुराने गीतों की बात ही कुछ और है। पुराने जमाने के सदाबहार गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं और आज भी ये गीत हमें खुशी और अपनेपन का एहसास देते हैं। आज भी वो नए से लगते हैं और आज के जमाने से लगते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, पुराने समय में रेडियो ही वो माध्यम था जिसके जरिए हम फिल्मी गीतों से जुड़े रहते थे, और आज भी रेडियो एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे बीच मौजूद है। आज प्रसारण की क्वालिटी और गुणवत्ता पहले से कहीं अधिक बेहतर स्वरूप में हमारे बीच है।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: अभी आप सुन रहे थे मधुरिमा कार्यक्रम मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: वाराणसी में बीते दिनों भारत आए 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया। जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के गवर्नर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल में जापान की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और सीईओ शामिल रहे। वाराणसी पहुंचने पर शहर के प्रवेश द्वार पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने जापानी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वाराणसी में जापानी प्रतिनिधि मंडल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। इसके बाद दल ने नमो घाट पर प्रसिद्ध गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखा और काशी की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। दौरे को उत्तर प्रदेश और जापान के बीच पर्यटन निवेश तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडो श्रीलंका बुद्धिस्ट सोसाइटी के महासचिव के सीमु थोरे ने बताया कि

0: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश में हर जगह में बौद्ध परिपथ, धर्म स्थल का रास्ता और एयरपोर्ट स्टेशन, हर तरफ का विकास हो रहा है। भारत एक विश्व गुरु बनाने के लिए, आर्थिक शक्ति बनाने के लिए प्रयास में है। उसी रास्ता सफल होने के लिए जापान और इंडिया दोनों देश रिश्ता आगे बढ़ने से देश बहुत मजबूत होगा विश्व में।
1: वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI के 56वें वार्षिक अध्यक्ष समारोह के अंतिम दिन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर से जुटे होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक आर्थिक अवसर में बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में किए गए निवेश, पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास, करों में कमी और GST में राहत से इस क्षेत्र की संभावनाओं का और विस्तार हुआ है। सरकार की नीतियां और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण इनेबलर्स हैं, लेकिन इन अवसरों को जमीन पर उतारने में हॉस्पिटैलिटी उद्योग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। समारोह में देश भर से होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य उद्योग से जुड़े व्यवसायी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की चुनौतियों, बदलती उपभोक्ता मांग और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा की गई। काशी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में 22 से 24 अगस्त तक आयोजित ओडिशा पर्व में ओडिशा की संस्कृति, कला, खान पान, हस्तशिल्प और पर्यटन की जानकारी देते हुए उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिडा ने कहा कि
2: इन्वेस्टमेंट को ओडिशा लाने के लिए, जो हॉस्पिटल सेक्टर को उड़ीसा बुलाने के लिए हमने ओडिशा पर्व का आयोजन किया। हमारी कुजिन का, शोकेसिंग का, हैंडलूम का, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का और हमारी डायस्पोरा जो हमारी उड़ीसा की ताकत है, उनसे मिलके बातचीत करने के लिए भी हम आए। वो सब अच्छे से संभव होगा बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से।
1: भारत सरकार के भारत पर्यटन वाराणसी कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन वाराणसी के सहयोग से स्थानीय होटल में होम स्टे एवं ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट संचालकों तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए अर्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य के विकास पर बल दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्यटक यात्रा के प्रत्येक पहलू, बुनियादी ढांचे एवं पर्यटन सुविधाओं की गुणवत्ता, आतिथ्य, सेवा वितरण, डिजिटल सहभागिता, सुरक्षा तथा समग्र पर्यटन अनुभव को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। श्री भुवनेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार की क्षमता निर्माण संबंधी पहल पर्यटन उद्यमियों को अधिक व्यावसायिक कार्य प्रणालियाँ अपनाने, सेवा मानकों में सुधार करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने तथा पर्यटकों की बदलती आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम बनाएगी। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि स्थानीय पर्यटन हितधारक वाराणसी के पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी को और अधिक टूरिस्ट फ्रेंडली शहर बनाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने होम स्टे एंड B&B संचालकों से पर्यटकों के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता, धैर्य और सहयोग की भावना रखने की अपील की। कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन मार्केटिंग, संपत्ति की ऑनलाइन लिस्टिंग, डिजिटल प्रचार प्रसार, परिचालन प्रबंधन, अतिथि सत्कार, ग्राहक सेवा, स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों तथा ऑनलाइन समीक्षाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां एवं व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर अपने पर्यटन व्यवसाय की पहुंच बढ़ाने तथा अधिक पर्यटकों तक पहुंचने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
3: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
4: बांदा में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार को लेकर शहर और गांव के बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दी। इस बार बाजार में चाइनीज राखियों की जगह देसी और हाथ से बनी राखियों की मांग ज्यादा दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने से बहनों में भी उत्साह का माहौल रहा। महिला के साथ एक सहयात्री को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाएं काफी खुश नजर आईं और उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। महिला यात्रियों ने कहा कि वे सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं।
5: गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है बस की, हमको जिससे हम बहुत खुश हैं। महिलाओं के लिए एक सुविधा दिया है कि उन्होंने फ्री किया है रक्षाबंधन के लिए 3 दिन का, उसमें एक सहयोगी भी है। ये चीज हमको सरकार की बहुत अच्छी लगी और इस चीज से हम लोग बहुत खुश हैं और हम उनके बहुत आभारी रहे।
4: जनपद के स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में विगत 25 अगस्त को नियुक्त पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अधीनस्थ

0: कृषि सेवा के अंतर्गत जनपद के चयनित 43 प्राविधिक सहायकों को प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित नव नियुक्त प्राविधिक को बधाई देते हुए प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि उम्मीद है कि आप लोगों को जो नए दायित्व मिले हैं उनका निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि
1: जनपद बांदा में 43 प्राधिक सहायक ग्रुप सी के बच्चों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिस पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, कहीं कोई किसी प्रकार की उन्हें समस्या नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ और निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ में मिला है।
0: वहीं नव नियुक्त प्रत्याशियों ने खुशी जाहिर करते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बांदा के स्थानीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विगत 12 अगस्त को 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रतिनिधि के तौर पर उनके विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने की। दीक्षांत समारोह में शामिल होने बांदा पहुंचे राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने विश्वविद्यालय के 250 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करने के साथ ही 18 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपनी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से देश और समाज के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी खुश नजर आए और सम्मान के लिए कुलपति का आभार जताते हुए कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सुधीर एम बोबड़े ने कहा कि इस बार दीक्षांत समारोह में पहली बार बच्चों के साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है।
2: विश्वविद्यालय में 250 बच्चों की उपाधियां दी गई है और उसके साथ साथ 18 मेडल्स दिए गए, उसमें से 10 बालिकाएं और 8 हमारे बालक है। कुल मिलाकर बेटियों को अगर मौका मिलता है तो शिक्षा में आगे बढ़ सकती है, ये कुलाधिपति महोदय का संदेश है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि उनके पास आने वाली सभी तरह की जन समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए। इसकी निगरानी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाती है, जिसको लेकर जनपद में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS से प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण में जनपद बांदा पुलिस को प्रदेश के 75 जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि IGRS पोर्टल पर जो पुलिस से संबंधित शिकायतें होती हैं, उनका समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाता है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता की संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि पोर्टल की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मंडल जोन और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जाती है।
3: शासन द्वारा एक IGRS पोर्टल चलाया जाता है, काफी समय से चल रहा है, एक बहुत ही नवीन पहल है ये सरकार की। पुलिस का जो पोर्टल है उसमें जितने भी पुलिस संबंधित समस्याएं किसी को भी रहती हैं, वो पोर्टल पे जाकर के बहुत ही 2 मिनट के अंदर अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकता है। मुख्यालय स्तर से भी जो CM ऑफिस है वहां से भी एक IGRS वहां पे सेल है जो इसकी मॉनिटरिंग करता है और लोगों से व्यक्तिगत बात करके उनका संतुष्टि पूछता है।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
6: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

श्री आनंद कुमार शर्मा ने ग्राम प्रेमापुर थाना चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी अंतिमा शर्मा दिनांक 3 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से कहीं गुमशुदा है। कुमारी अंतिमा शर्मा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है, रंग गोरा है और एक गहरा बदन है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है। इन्होंने सूट सलवार पहना है। कुमारी अंतिमा शर्मा के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना कोतवाली चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। श्री बुद्धूलाल अग्रहरी निवासी ग्राम सत्यागंज थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनके पुत्र श्री रमेश चंद्र

0: अग्रहरी दिनांक 13 जून 2026 को लगभग 4:30 बजे से लापता हैं। रमेश चंद्र अग्रहरी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 35 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका रंग गोरा है और इन्होंने काले रंग का पैंट और सफेद रंग का शर्ट पहना है। रमेश चंद्र अग्रहरी के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मनोज गौतम ने बेलवा रामसागर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी साधना दिनांक 3 जून 2026 शाम 4 बजे से कहीं गुमशुदा है। कुमारी साधना के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 20 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, इनका चेहरा लंबा है, रंग सांवला है और एक गहरा बदन है। इन्होंने प्लाजो और नीले रंग का टी शर्ट पहना है। कुमारी साधना पुत्री श्रीमती मंजू देवी के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम कुमारी साधना है। श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने ग्राम कैलहट थाना चुनार जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी माताजी मुन्नी देवी दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन 3 बजे से गुमशुदा हैं। मुन्नी देवी पत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 53 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, इनका रंग गोरा है और इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुन्नी देवी के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। श्री दूधनाथ पुत्र स्वर्गीय मेवालाल निवासी ग्राम मीरापुर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनके पुत्र पुनीत दिनांक 10 जुलाई 2026 सुबह करीब 8 बजे बिना बताए कहीं चले गए हैं। पुनीत कुमार पुत्र श्री दूधनाथ के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग सांवला है और इन्होंने काली हाफ पैंट और सफेद टी शर्ट पहनी है। पुनीत के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। सन्नो देवी ने ग्राम भोड़सर पोस्ट अमोई कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनके पुत्र सिद्ध उर्फ अर्जुन दिनांक 22 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। सिद्ध उर्फ अर्जुन के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, इनका चेहरा गोल है और रंग सांवला है। इनके सिर पर कटे का निशान है। इन्होंने गोल गले की सफेद टी शर्ट और हाफ पैंट पहना है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और बातचीत ठीक से करने में भी असमर्थ हैं। सिद्ध उर्फ अर्जुन के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम सिद्ध उर्फ अर्जुन है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से होगा।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: खत इंसानी शख्सियत का आईना होते हैं और इंसानी अफकार से शनासाई का खामोश जरिया भी। कदीम अरबी का एक मशहूर मकोला है कि खत आधी मुलाकात होते हैं। आकाशवाणी लखनऊ से नशर उर्दू प्रोग्राम में खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम इसकी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि हमारे सामईन हमें जिस खुलूस और मोहब्बत से खत लिखते हैं उससे न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है बल्कि हमारे प्रोग्राम में बेहतरी के लिए तजवीज पेश करके अच्छा काम करने का जोश हम में भर देते हैं। यकीन मानिए, खत पढ़ते वक्त कुछ यूं महसूस होता है मानो आप और हम आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हों। आज के खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे सामईन के ऐसे ही बेशकीमती ढेर सारे खतूत हमारे हाथों में इस वक्त हैं, जो आकाशवाणी के लखनऊ से आपकी मोहब्बत के सबूत हैं। सामईन इकराम, इन प्यारे खतों के साथ आज के खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में हाजिर है आपकी मेजबान शाइस्ता जाहिद। आदाब, कबूल फरमाइए और आपके खतों के दिलचस्प जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हर दिल अजीज जनाब मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी जी। राजेश्वरी जी आपको भी हमारा आदाब।
3: शायस्ता जी आपको बहुत

0: बहुत आदाब और सुनने वालों की खिदमत में मैं आदाब पेश करता हूँ।
1: और राजेश्वरी जी, देखिए हमारे जो लिसनर्स हैं वो इतना ज्यादा संजीदगी से हर प्रोग्राम को सुनते हैं, उसके बारे में हमें मशवरे देते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे कौन से प्रोग्राम को बहुत ज्यादा दाद मिल रही है। और कुछ ऐसी ही दाद के मामले में आज एक रिकॉर्ड टूट गया है।
0: अच्छा।
1: भाई हमारे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम अभी जो हम लोगों ने नया शुरू किया वो है शह और मात के नाम से। तो इस सीरीज के अंदर रावी का जो किरदार है आपने अलग अंदाज से उसको भी पढ़ा है, तो उसके बारे में मुझे लगा कि आपने इसको बड़े दिल से किरदार को निभाया है।
0: असल में शायस्ता जी, हुआ ये कि जब इस सीरियल्स के बारे में जनाब आसिफ साहब से बात हो रही थी
1: जी,
0: तो कैसे इसको किया जाए, क्या करना चाहिए, किस तरह की शक्ल इसकी होनी चाहिए, कौन कौन से किरदार हों, तो काफी महीने इस पर बातचीत होती रही। आसिफ साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया इसमें। और खुशी की बात ये थी कि आसिफ साहब ने सारे जो कैरेक्टर्स को जो रोल दिया है वो इस पर भी बहुत काम हुआ कि किस किस को किस तरह से अपने किरदार निभाना होगा। तो दिलचस्प ये है कि इसकी जो स्क्रिप्टिंग की है आसिफ साहब ने, और वो कमाल की है।
1: आपने इतनी दुरुस्त बात फरमाई, और ये बात सिर्फ आपका और हमारा ही सोचना और कहना नहीं है, बल्कि आप देखिए कि ये जो खतों की तादाद मेरे हाथ में है, ईमेल्स हैं, ये इस बात का सबूत है।
0: अच्छा, सारे ईमेल्स इससे रिलेटेड हैं?
1: जी, इसीलिए मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं सारे, मुझे खतूत पढ़ना भी है। और देखिए इसमें एक और बहुत खास खत है जो कि हमारे यही के अनाउंसर, हमारे जो सीनियर रहे हैं सत्यानंद वर्मा जी, जो हमारे सीनियर रहे हैं। और सबसे पहले तो भाई इन्हीं का खत मेरे हाथ में है क्योंकि इन्होंने इस प्रोग्राम की बड़ी तारीफ की है। और आप ये देखिए कि 20 मिनट के प्रोग्राम के पीछे कितनी मेहनत होती है। ये तो आपने अभी जो बताया कि महीनों से इस पर एक बातचीत चल रही थी। अब हम आपको सत्यानंद जी के बारे में, इनके जो हमारे खत जो मौसूल हुआ है इनका, इसके बारे में बताते हैं कि इन्होंने लिखा है, बहुत ही उम्दा कोशिश, उर्दू अदब की जासूसी नॉवल को उर्दू प्रोग्राम में शामिल करके प्रोड्यूसर आसिफ साहब ने एक तारीखी काम किया है। मैं कौन हूँ उनवान के पहले एपिसोड से फिलहाल जाहिर तो नहीं हुआ कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, लेकिन तजस्सुस कायम करने में अफसाना कामयाब है। पर यही तो कामयाबी, और ये वाकई तजस्सुस वाली बात तो अभी भी बरकरार रही है। सस्पेंस ही इस जॉनर की खासियत है। तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया। इसके साथ ही क्यों ना हम एक दो और भी खत ले लेते हैं। ये खत हमें मौसूल हुआ है मोहतरमा शमीमा खान, मौजा सिहोंडा पोस्ट, भागनगर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। इन्होंने भी आकाशवाणी लखनऊ से नश्र होने वाले 17 अगस्त को प्रोग्राम शह और मात की पहली किस्त के बारे में भरपूर तारीफ लिखी है। इन्होंने कहा है कि कहानी का अंदाज, मुकालमे और फनकारों की आवाज ने बहुत मुतासिर किया। खास तौर पर ये बात अच्छी लगी कि कहानी में तजस्सुस बरकरार रखा। देखिए तजस्सुस लोगों को वाकई पूरा कामयाब रहे बरकरार रखने में। और पहली किस्त के इख्तिताम पर दूसरी किस्त सुनने की ख्वाहिश मजीद बढ़ गई है। उम्मीद है कि उर्दू प्रोग्राम में आइंदा भी ऐसे म्यारी और दिलचस्प कहानियां शामिल की जाती रहेंगी। तमाम फनकारों, जिसमें कामरान यानी शम्सुल आरफीन और हसन मुश्तबा यानी आसिफ इकबाल साहब की आवाज बहुत दिलचस्प लगी, और जेश्वरी जी की मखमली आवाज ने मजीद दिलकशी पैदा कर दी।
0: देखिए शायस्ता जी, जनाब सत्यानंद वर्मा जी का बेहद शुक्रिया कि रेडियो से जो उनकी दिलचस्पी रही है, उनकी जो खिदमत रही है, तो वो काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि एक हमारे लिए एक सरमाया भी है।
1: बेशक
0: इतने बेहतरीन प्रोग्राम खुद वो प्रोड्यूस करते थे
1: जी,
0: तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन वक्त निकाला है आपने ये जासूसी नॉवल शह और मात के, जो मैं कौन हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने इसको सुना, आपने खत रिसाल किया। सत्यानंद जी, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और शायस्ता जी, रही बात हमारे शमीमा खान साहिबा का, जिन्होंने संत कबीर नगर से ये ईमेल रिसाल किया है। शमीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया। और रही बात किरदारों की, तो भाई शमसुल भाई ने जो रोल अदा किया है यकीनी तौर पर बहुत अच्छी कोशिश करते, मेहनत भी करते, लेकिन ये जानकर कि मतलब इतना लोग पसंद करते हैं, इतना लोग सुनते हैं
1: जी, तो अभी तो ये शुरुआत है राजेश्वरी जी, अभी तो हमारे हाथ में और बहुत सारे खत हैं।
0: अच्छा, इसी प्रोग्राम से मुताल्लिक?
1: जी जी जी,
0: माशाल्लाह।
1: क्योंकि देखिए सभी तजस्सुस का तो आप देख ही रहे हैं कि क्या आलम है। एक इस खत से भी जाहिर होता है, ये हमारे शायद बहुत पुराने लिसनर हैं, जरगाम खान साहब हरदोई से।
0: अच्छा,
1: ये लिखते हैं कि 17 अगस्त को शह और मात की पहली किस्त आपने सुनी। इस किस्त में फनकारों ने अपनी आवाज के उतार चढ़ाव, लबो लहजे और बेहतरीन अंदाज अदा से अपने फन खूबसूरत मुजाहिरा किया। इसी वजह से प्रोग्राम की पेशकश में दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहा। यही वजह है कि पहली किस्त के इख्तिताम के साथ मन अभी और समाअत का तलबगार है। और इसी से मुतालिक एक और खत हमारे हाथ में है, मोहतरमा इमराना खातून का, बस्ती से।

0: आपने भी 17 अगस्त के प्रोग्राम शय और मात की पहली किस्त की बहुत तारीफ की है।
1: शायस्ता जी, ये जो तजस्सुस है ना
0: जी,
1: यही इस सीरियल की, इस प्रोग्राम की जान है। जिस तरीके से इसको बनाया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, जिस तरीके से उसको लिखा गया है, अगर वो दिलो दिमाग पर उस तरह से असर डाल रही है तो यकीनी तौर पर हम कामयाब
0: हैं। यही कामयाबी है इसकी। हाँ।
1: जरगाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को इतनी शिद्दत के साथ सुना है, इतना प्यार किया है और अपनी बात हम तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस्ती की इमराना खातून साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया।
0: और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी दूसरी किस्त भी उतनी ही शिद्दत से पसंद आई होगी। और देखिए, इसी सिलसिले में और भी हमारे पास खुद है, फायजा बिन्त मुजीब अहमद, हलीम नगर, सीतापुर, यूपी से। आपने भी इस प्रोग्राम की, शय और मात की बेशुमार तारीफों के पुल बांधे हैं।
1: फायजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शय और मात के इस खास प्रोग्राम को सुना, वक्त निकाला हमारे लिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
0: राजेश्वरी जी, एक हमारे लिसनर हैं जिन्होंने 24 जुलाई 2026 के उर्दू प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है।
1: अच्छा,
0: इस प्रोग्राम में एक मकाला पेश किया गया था क्लासिकी शायरी में तसव्वुफ पर, इस पर बेहतरीन मालूमात दी गई थी और प्रेजेंटर थे डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर जी।
1: अच्छा,
0: इनके लिए हमें तारीफ भेजी है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। तो मोहम्मद सईद अख्तर साहब को इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है इस प्रोग्राम के लिए।
1: भाई दुर्गेश नागिनपुरे जी, राधेश्याम जी, वंदना, भावना, बिंदु जी, कुसुमबाई जी, दिव्यांश जी, सूरज भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 24 जुलाई का जो प्रोग्राम था और खासतौर से जो मकाला इसमें पेश किया गया क्लासिक की शायरी में तसव्वुफ पर, लाजवाब तो थी ही, वो आपको पसंद आई ये सुनकर के और दिल खुश हो गया। और उसके जो प्रेजेंटर्स थे मोहम्मद सईद अख्तर साहब, आपकी मुबारकबाद हम तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और आपको एक चीज तो महसूस हुई होगी राजेश्वरी जी, कि हमारे सामईन जो है मुशायरे बड़ा पसंद करते हैं। और मुशायरा 1-3 अगस्त को गया था जिसका उन्वान था दोस्ती तुझे सलाम। इस प्रोग्राम को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और जो हमारे प्रोग्राम के निजामत करते हैं शमसुल आरफीन साहब, इनके तो मुझे लगता है कि हमारे सामईन दीवाने से हो गए। तो ये प्रोग्राम जो है इसके लिए भी हमारे पास कई सारी तारीफों से भरे खत आए हैं। ये खत हमें मौसूल हुआ है जनाब असगर अली जहूरी, असगर बिलग्रामी का। आप लिखते हैं कि उर्दू प्रोग्राम के तहत एक नज़मिया महफिल बाउनवान दोस्ती तुझे सलाम नशर हुई, जिसकी पेशकश थी आले जनाब आसिफ इकबाल साहब की और जिसकी निजामत फरमा रहे थे आले जनाब शमसुल आरफीन साहब। मधु शोरा में जनाब हाफिज मसूद साहब, जनाब इशरत सगीर साहब और नाचीज असगर बिलग्रामी। मोहतरम हाफिज मसूद साहब ने दोस्ती के हर रंग का अपनी शायरी में जिक्र किया। कहीं पर दोस्त की तारीफ की तो कहीं अच्छे दोस्त बनने के लिए मशवरे, कहीं अच्छे दोस्त की खुसूसियात। जनाब इशरत सगीर साहब ने तो दोस्ती की तारीख के हवाले से वो मिसालें पेश की के जिक्र मुहाल है। ऐसे प्रोग्राम उर्दू की बका के लिए बेहद जरूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे आकाशवाणी से नश्र होते रहेंगे।
1: असगर बिलग्रामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो दोस्ती तुझे सलाम के मौजू पर मशायरा जो आप सुना है, और यकीनी तौर पर जो शोरा उस पर मधु किए गए थे, बेहद खूबसूरत कलाम उनका रहा है, आप तक पहुंचा और आपको पसंद आया, इसके लिए शुक्रिया। निजामत कर रहे थे इसके शमसुल आरिफीन भाई, तो भाई इस माइक्रोफोन के जरिए भी हाथों हाथ उन तक आपकी मुबारकबाद हम पहुंचा रहे हैं। आपने खत लिखा और खास तौर से इस बात का भी जिक्र किया कि इस तरह के प्रोग्राम हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आपकी सरपरस्ती मिली, आपकी दुआएं चाहिए कि उर्दू प्रोग्राम में हम इस तरह के प्रोग्राम को शामिल कर सकें। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।
0: राजेश्वरी जी, हमारे इसी प्रोग्राम के लिए हमें दो और खत मौसूल हुए हैं। ये है जनाब इशरत सकी शाहजहांपुर से, ये लिखते हैं, दोस्ती तुझे सलाम प्रोग्राम सुना। इस खूबसूरत बज्म की निजामत कर रहे शमसुल आरफीन साहब को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस महफिल शेर व सुखन में दोस्ती के हवाले से बहुत ही आला मियारी कलाम पेश किए गए और दोस्ती तुझे सलाम इस प्रोग्राम को पसंद किया है उमर हनीफ साहब ने भी। और ये लिखते हैं कि मोहतरम शमसुल आरफीन साहब की पेशकश दिल को छू लेने वाली होती है, आपका उर्दू प्रोग्राम बहुत पसंद आया, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं।
1: उमर हनीफ साहब और इशरत सगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि दोस्ती तुझे सलाम के उनवान से जो प्रोग्राम आप तक पहुंचा है। शाइस्ता जी, देखे कमाल देखें कि सुबह का वक्त होता है
0: जी
1: 9:30 बजे का, और लगभग सारे लोग या तो ऑफिस जा रहे होते हैं, बाकी लोग भी अपने कामों में मशगूल रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि उर्दू प्रोग्राम से इतना इश्क और इतनी मोहब्बत है कि प्रोग्राम जरूर सुन रहे हैं,
0: जरूर सुन रहे हैं।
1: खासतौर से कोई मियारी प्रोग्राम अगर हमारा पहुंचता है
0: जी,
1: तो उसको तो ये ईमेल्स और खत बता रहे हैं कि कितने प्यार से वो लोग सुनते हैं। भाई शुक्रिया भी मुझे लगता है कि बहुत कम है
0: जी,
1: लेकिन रिवायती तौर से कहना तो होगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और

0: राजेश्वरी जी, देखिए एक बार फिर मेरे हाथ में उसी प्रोग्राम के लिए जिससे हमने शुरुआत की थी 17 अगस्त 2026 से आकाशवाणी लखनऊ से उर्दू प्रोग्राम में नश्र हुआ शह और मात का पहला एपिसोड मैं कौन हूँ। इसके लिए ये खत हमें मौसूल हुआ है सैयद उमेर, अजहर इकबाल, अनम, जोया, समीना अजहर, इन सब का मानक नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ से। प्रोग्राम शह और मात की किस्त, पहली एपिसोड की किस्त मैं कौन हूँ को सुना और सुनकर इन्हें बेहद लुत्फ आया, जिसमें मुख्तलिफ किरदारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। प्रोग्राम के रावी राजेश्वरी साहब ने उम्दा तरीके से कहानी की शुरुआत की, फिर मुख्तलिफ आवाजों में किरदारों का सिलसिला जारी हुआ। तो राजेश्वरी जी, शह और मात प्रोग्राम के मुतालिक हमारे पास और भी बहुत सारे खतूत आए हैं जो कि मेरे हाथ में हैं। इस वक्त इन सभी ने क्योंकि तारीफ इस प्रोग्राम की लिखी है, तो चलिए वक्त को देखते हुए हम इनके नाम एक बार पढ़ देते हैं। ये खत हमें मौसूल हुआ है विजय कॉलोनी RDSO आलमबाग लखनऊ से नियाज अहमद, तलहा जाहिद, हमजा जाहिद, अयान जाहिद और इनके दोस्त मोहम्मद ताहा और हबीबा जावेद का और मोहम्मद जाहिद का। इसके साथ ही फैजुल्लागंज लखनऊ से इरम शीरीन का खत हमें मौसूल हुआ है इसी प्रोग्राम शह और मात की तारीफ के लिए। और ये खत हमें मौसूल हुआ है हफीज मसूद महमूदाबादी खैराबाद सीतापुर से, आपने भी शह और मात प्रोग्राम की दिल खोल कर तारीफ की है। जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से ये खत हमें मौसूल हुआ है असगर अली जहूरी, असगर बिलग्रामी और उनके साथियों का शह और मात प्रोग्राम की तारीफ के मुतालिक। और ये खत हमें मौसूल हुआ है नदवा कॉलेज कैंपस लखनऊ से सादिया खातून का, आप भी हमें लिखती हैं कि मैं कौन हूँ ये प्रोग्राम आकाशवाणी लखनऊ से 17 अगस्त को जो नश्र हुआ वो हमें और हमारे पूरी फैमिली को बेहद पसंद आया।
1: शाइस्ता जी, कमाल कर दिया आसिफ इकबाल साहब ने
0: जी।
1: आज मुझे लग रहा है कि अगर तफसील से खत पढ़े जाएं
0: जी,
1: तो कितने प्यार से कितनी मोहब्बत के साथ में हमारे सुनने वालों ने इस प्रोग्राम को सुना है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने सुनने वालों का कि इतना प्यार, ऐसी सरपरस्ती, ऐसी राय, ऐसे मशवरे हमको देते रहें ताकि हम आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कुछ बेहतरीन प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना है लेकिन खत नहीं लिखा उनको भी शुक्रिया, जिन्होंने खत लिखा उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे ईमेल्स एक प्रोग्राम के मैंने शाइस्ता जी कभी नहीं पढ़े
0: जी। वही तो बात है कि हम
1: कमाल की बात है,
0: खुद आज जो प्रोग्राम में ये खत शामिल कर रहे हैं तो वक्त की कमी की वजह से हम पूरे खत जिनके नहीं पढ़ पाए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा राजेश्वरी जी, कुछ हमारे जो सामईन हैं उनको ये दिक्कत आ रही थी कि प्रोग्राम हमारे सही तरीके से उनको रेडियो सेट पे सुनाई नहीं दे रहे थे, इससे मुतालिक हमें ये दो खत मौसूल हुए। एक एराज अरमान जी का है, ये कहते हैं कि 3-4 दिनों से आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुनने को नहीं मिल पा रहे हैं, लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई है, आप हजरात से मोदवाना गुजारिश है कि इस खराबी को दूर करने की मेहरबानी।
1: एराज अरमान साहब, आपको प्रोग्राम टेक्निकली ठीक से नहीं मिल पाया, मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहीं ट्रबल हो सकता है, कोई दिक्कत रही होगी, लेकिन अब तो बिल्कुल दुरुस्त है और प्रोग्राम आपको बाकायदा बिना किसी परेशानी के पहुंच रहा है, उसका बहुत शुक्रिया खत लिखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: और राजेश्वरी जी देखिए, एक प्रोग्राम हमारा गया था 31 जुलाई को दास्ताने प्रेमचंद, इससे मुतालिक हमें ये खत मिला है। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम और बाबू दिव्यांश का, आप कहते हैं कि हमें 31 जुलाई 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इस प्रोग्राम में मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में दी गई जानकारी लाजवाब लगी, धन्यवाद। और इसी से मुतालिक एक हमें खत और मौसूल हुआ है यासीन इब्ने उमर सीतापुर का, इन्होंने भी प्रेमचंद से मुतालिक दास्ताने प्रेमचंद प्रोग्राम की 31 जुलाई की तारीफ की है।
1: भाई आप सभी का बहुत शुक्रिया कि दास्ताने प्रेमचंद आपने सुना और एक अलग किस्म का प्रोग्राम था, हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग शक्ल में अलग अलग तरीके से उस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएं, उनकी कहानी पर मबनी ये प्रोग्राम था, आपने सुना, आपका बहुत शुक्रिया।
0: और राजेश्वरी जी, 14 अगस्त को एक प्रोग्राम गया था जिसकी तारीफ हमें भेजी है उमर हनीफ साहब ने, ये लिखते हैं कि आला तरीन बेहद उम्दा प्रोग्राम लगा, डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा ने बेहद खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, उनकी गुफ्तगू में नुदरत कमाल की थी, बेहतरीन अंदाज बयां के लिए कल्बी मुबारकबाद के वो मुस्तहक हैं।
1: आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आकाशवाणी लखनऊ से जो नश्र प्रोग्राम होते हैं खासतौर से उर्दू प्रोग्राम और उसमें जितनी भी बातें आप तक पहुंचाई गईं आपको अच्छी लगी, उसका बहुत शुक्रिया।
0: और ये खत हमें मौसूल हुआ है जनाब इशरत सगीर साहब का शाहजहांपुर से, यौमे आजादी और जमहूरियत हमारी जिम्मेदारी। इस प्रोग्राम को इन्होंने बेहद पसंद किया है और इसके साथ ही इन्होंने भी डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा के सवालों और जवाबों का बहुत ईमानदारी से और मुनासिब अंदाज में जवाब दिए जाने की भी तारीफ की है और यौम आज़ादी और जमहूरियत हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम की भी बहुत तारीफ की है।
1: इरशाद सगीर साहब, आपने यौम आज़ादी पर जो खास प्रोग्राम सुना, हमें खुशी हुई कि उसके बारे में आपने लिखा है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने देवता दीन सरोज के स्वर में कजरी सुनी। लोक संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, इनके स्वर में लोक संगीत आप सुन सकते हैं आज दिन 1:45 पर और कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम झंकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की से, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये गीत हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज लता मंगेशकर की है।

ये आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम नूरी, गीतकार हैं नक्श लायलपुरी, संगीत दिया है जानिसार अख्तर ने।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था नूरी, गीतकार थे नक्श लायलपुरी, संगीत दिया था जानिसार अख्तर ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म इज्जत का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यह आवाज थी मुकेश और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सरस्वती चंद। गीतकार थे इंदीवर, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आइए अब सुनते हैं फिल्म महान का एक गीत। गीतकार हैं अनजान, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम हम तुम शबाना, आवाज अभिषेक, डॉक्टर पलाश सेन और अनुष्का की।

मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। श्रोताओं, आपके पत्रों पर आधारित आपकी ही पसंद के गीतों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में मैं हाजिर हूं, आपकी रेडियो हमसफर अंजना झा। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी ही पसंद का ये गाना।

बप्पी लाहिरी का था। पसंद करने वाले श्रोता, छोटी पियरी वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित, पुलकित और उनके दादी जी, वाराणसी से ही काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा, विजय लक्ष्मी और कुसुम लता सिंह, स्टेशन रोड बस्ती से जयप्रकाश भारती, नीलेश कुमार, कविता और स्वाति, गीत की फरमाइश आई लखनऊ संजय नगर ऐशबाग कॉलोनी से। ये श्रोता हैं हमारे एडवोकेट वारिस अली खान, डॉक्टर शहनाज, शकील अहमद और इस्लामुन्निसा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एसटी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफताब अंसारी और मेराज अंसारी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा। फरमाइश आई मस्तूरी ग्राम मचहा छत्तीसगढ़ से राजकुमार पटेल, गोमती पटेल, धनय कुमार पटेल और टीकेश पटेल की। और अब कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे तोहफा फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार इंदिवर, संगीत

आप सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता, इस फिल्म का गीत आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाजें थी। गीत गुलशन बावरा का और संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की।

एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, विद्यानगर परली वैजनाथ से मास्टर आरजी फड, विजय धनंजय, गणेश ऋषिकेश, अर्चना और प्रतीक्षा, अमरपुर छत्तीसगढ़ से रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा श्रीवास्तव, इसी गीत की फरमाइश आई नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा और इनके सभी दोस्तों की, लच्छनपुर से रामजी साहूज और जीवन लाल रजक, फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार, ग्राम सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से, मौनी बाबा धाम चोचकपुर गाजीपुर से हमारे श्रोता राम सकल चौधरी, सूरज, शिवम, सत्यम, आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य, और प्रमीलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल।

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गुरु फिल्म का गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाएंगे दहक फिल्म से। हरिहरन और सादरा सरगम की आवाज़ें और इन दोनों ही गीतों के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय, सरोज, शुभम और शिवम जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल, डिंपल जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल और दुर्गेश जायसवाल। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीश अहमद अंसारी, शकील अहमद अंसारी और सुनील रस्तोगी। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया अयान और अस्तुपुरा मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद और इनके परिवार के सभी सदस्य। मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गोहानकर, सरिता वैशाली, शैलेश, सुमित कुमार और सिद्धांत गोहानकर, जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और इनके परिवार के सभी सदस्य। यमुनानगर हरियाणा से सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर, रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, सविता, बेबी स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्य। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से

आप सुन रहे थे दहक फिल्म का गीत, और इस गीत के बाद जो अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे उस फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। गीतकार मजरू, संगीत आरडी बर्मन, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। पसंद आप सभी श्रोताओं की महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा और हनुमान बोड़खे, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, ईदगाह मच्छरहट्टा वार्ड रामनगर से लंबे बाबू, नौशाद, लखू, बेलाल, शमा, सुगन, नाहिद, जरीन और बाबू।

अंसारी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप, केशव पटेल और सरला प्रकाश, डीएलडब्ल्यू वाराणसी से शिल्पा, रीमा, रिशु, सीमा, प्रीति छोटी और मिठी, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना प्यार का मौसम फिल्म से।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, और इस कार्यक्रम का अगला गीत पाकीज़ा फिल्म से पसंद। आप सभी श्रोताओं की मीरापुर बसही से शगुन यादव, मनीष पटेल, ओपी पटेल, संजय पटेल, गोविंद पटेल, सनी, नागेश, संतोष, श्याम सुंदर पटेल और इनके मित्रगण, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना, धनबाद से पसंद आई, धनबाद से हमारे श्रोता प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद और प्रतिभा रंजन प्रसाद। ये फरमाइशी पत्र धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुष्का, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण और सी एल यादव।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे लोफर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। अहमदनगर से सुनील साठे, लता साठे, शुभम साठे और शुभांगी, विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान बरेली से।

अड़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार और बड़क चौहान, अहमदाबाद से जतिन मेहता, भालचंद्र वड़के, फुलवा मेहता, विकास वड़के और नीलेश, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, फरमाइश ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, रचिता मस्कीन और चैतन्य मस्कीन।

अलका याग्निकर और उदित नारायण की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ताल फिल्म का गीत। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मधुमती फिल्म का गीत। इन दोनों ही गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइशें इन सभी श्रोताओं की। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, फरमाइश आई त्रिपुरी पटियाला से मुकेश बाछल, राकेश बाछल, संदीप, अमनदीप, आकाशदीप, मनीषा और जतिन बाछल, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विन, गोविंद, टोनी और लव दीवान, ये फरमाइश हरिपुरा झज्जर से प्रदीप वधवा, आशा, गीतेश, मोक्ष, यश, निखिल और खनन वधवा, करौता लोहता वाराणसी से विनोद कुमार प्रजापति, सीमा प्रजापति, शिवानी सिमरन, शिवम कन्हैया, सरिता किशन, मिशन अनन्या और चंद्र कृष्ण प्रजापति, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी, मदनेश्वर सिंह, अमित कुमार, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरव, अर्पित, हर्षित, लाल बहादुर, जयराम बिंद, विद्या संध्या और वीरेंद्र पांडे, सुनना चाहा अलीका डब्बवाली से वसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, रायगढ़ बाबा कुटीर से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, अंजलि चौहान, ऋतिका चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्य, और ये फरमाइश है त्रिलोचन घाट वाराणसी से राजेंद्र प्रसाद केशरी, सावित्री केशरी, रंगोली केशरी और आशुतोष की।

श्रोताओ, मधुमति फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम

0: वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
1: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
0: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें।

0: हम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
1: जी
0: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
0: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
1: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
0: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
1: जी।
0: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
1: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
2: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Long Changla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is something soft. A flower.
3: Yes. But what flower is it? Smell it.
4: It is a rose.
3: Good. Now try another thing. What do I hold?
4: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Ong Shangla took the bell and shook it herself.
3: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
2: Ong Shangla touched it.

0: glass.
1: She put one finger slightly into the glass.
0: A glass of water?
2: Are you sure? It could be milk or juice.
1: Ong Shangla tasted it.
0: Oh, it is not water. It is orange juice.
2: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
1: She took off the scarf. Ong Shangla blinked and looked at her.
0: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
2: So, Ong Shangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
0: Yes, Ava.
2: Good girl.
1: Ong Shangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
2: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम Seeing Without Seeing.
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई. मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना. हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ.
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया.
4: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है.
6: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो. सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं.
3: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता.
7: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं. कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है.
8: साथियों नमस्कार.
9: नमस्कार साथियों.
8: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति. शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता.
9: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी. ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी. तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति.
8: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन. इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है. प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है. इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
9: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें. इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं. वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं. एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से.
8: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू. दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी.
10: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?

0: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
1: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
2: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
5: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
5: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
5: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
5: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
6: 15, 40
5: क्या?
3: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
6: 13, 12, 11। ओह
5: जॉन्सी,
6: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो?
6: 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
5: क्या कम हो गए हैं?
6: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
3: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
5: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
6: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
5: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
6: Only 4।
5: मेरी तरफ देखो
6: सू, only 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
5: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
6: 3 पत्तियां।
5: पत्तियां?
6: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
5: हाँ हाँ,
6: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
5: क्या लगता है?
6: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं और जिस दिन

0: खरी पत्ता गिर जाएगा ना उस दिन
1: क्या जॉन्सी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओ जॉन्सी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी

0: वहां है या नहीं? खोल सरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: हाँ, 2 दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
2: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
2: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
0: ओ गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
2: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।

0: कोई पत्ता नहीं है।
1: नहीं,
0: लेकिन सू कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस।
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू
1: हाँ
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं रश्मि चौधरी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थी रश्मि चौधरी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन, कलाकार है पंडित जसराज, राग है भीम पलासी, आपके साथ तबला संगति उस्ताद जाकिर हुसैन की।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन, राग था भीम पलासी। आपके साथ तबला संगति उस्ताद जाकिर हुसैन की थी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार सुनिए दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4,000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल

भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार

0: सत्र की आठवीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 का। सुगम संगीत आप सुनेंगे आज रात्रि 8:00। कलाकार होंगी बेगम अख्तर। किसान भाई अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें संकर नस्लों की गायों में गर्भधारण की समस्या, इस विषय पर डॉक्टर पवन कुमार यादव से की गई बातचीत किसान भाइयों को सुनवाएंगे। और इस बातचीत के साथ ही किसान भाई सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे देवता देन सरोज। इन्हीं के गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और नेहा मिश्रा की वार्ता, जिसका विषय होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हुनर से रोजगार तक। बहने दिन 1:15 पर अपना गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगी, जिसमें स्टार्टअप और महिलाओं के लिए नए अवसर, इस विषय पर महिला उद्यमी राखी जायसवाल से सुरेखा सिंह की बातचीत बहनों को सुनवाएंगे। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 2:30 पर, और आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भोजपुरी फिल्म संगीत, जो कि आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5:00, शाम 6:10 पर और रात्रि 10:00। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे शाम 7:31 पर और रसमाधुरी रात्रि 8:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, और अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका कुमारी, जिनके पिता का नाम नीबूलाल है, ये निवासिनी है हेतिमपुर थाना चकिया जनपद चंदौली की। प्रियंका कुमारी 17 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, रंग गोरा और इनका चेहरा लंबा है। अगर आपको प्रियंका कुमारी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष चकिया चंदौली को सूचित करें, और सूचना के लिए हम आपको फोन नंबर भी बता रहे हैं। नंबर है 7518822061, 7518822061। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त सूचना के अनुसार सोनम कुमारी, जिनके पिता का नाम अभिमन्यु है, ये निवासिनी है बरौजी थाना चकिया जनपद चंदौली की। सोनम कुमारी 28 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 19 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फीट और इनका चेहरा लंबा है। अगर आपको सोनम कुमारी के बारे में कोई भी

0: जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष चकिया चंदौली को सूचित कर सकते हैं और सूचना आप अपने नजदीक के पुलिस थाने को भी दे सकते हैं। नंबर भी आपको हम बता रहे हैं, नंबर है 9125488836, 9125488836। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के अपने 2 रोजा दौरे के पहले दिन आज राजधानी बिश्केश में भारत के दोस्त के साथ बातचीत की। योगा और मानस एकेडमी समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान के साथ काम करने वाले 4 वफूद इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम ने बिश्केश के महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर आजम आज शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 137वें एडिशन में कल गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा मुनाकिद किए जाने वाले मिशन शक्ति सेट का जिक्र किया। स्पेस किड्स इंडिया के सीईओ ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम के जरिए मिशन शक्ति सेट के जिक्र की तारीफ की है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि नमन आपको। आपने हमारे मिशन के बारे में अपने मन की बात में जिक्र किया, हमारे लिए भर उड़ के आए। 2 साल से हम इस मिशन के लिए काम कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि काश ये बात प्रधानमंत्री जी के कान तक जाए और वो दिन हमें साकार हुआ। बहुत धन्यवाद मिशन शक्ति सैच, आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर एक बेहतरीन मुतनज़िम और आलिम थे, जिन्होंने अवामी जिंदगी में अपने दहाइयों के तवील सफर के दौरान मुल्क और उसके इकदार के मुतजलजल वाबस्तगी की मिसाल दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि कौम के तई उनकी लगन और अवामी जिंदगी में उनकी देरीना शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में रियासत के लोगों से अपील की है कि वो जन्माष्टमी के मौके पर अपने विरसे के तहफ़ समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने और एक तरफा याफ्ता और शानदार उत्तर प्रदेश की तामीर का अहद करें। वजीर आला ने लिखा कि श्री कृष्ण की जिंदगी हमें फलाही हुक्मरानी की बुनियादी रूह से भी मुतासर करती है। आज इसी जज्बे के साथ हुकूमत मुआशरे के आखिरी मुकाम पर खड़े शख्स की जिंदगी में इज्जत और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जिले के दौरे पर हैं। वो रुपेडिया में बहराइच नानपारा नेपालगंज रोड के दरमियान नई तामीर शुदा और इलेक्ट्रिक रेल लाइन का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वाराणसी जाने वाली ट्रेन को नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नई रेल लाइन के खुलने से बहराइच और सरहदी इलाकों के लोगों को आमदोरफ्त में आसानी होने की उम्मीद है और नेपाल की सरहद से मुतालिक तजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा होने के इम्कान हैं। समाजी बहबूद के वज़ीर मुमलिकत आज़ादाना चार्ज असीम अरुण ने बताया कि इस साल विमुक्त जाति दिवस के लिए रियासती सतह का अहम प्रोग्राम आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मुनक़िद होगा। आज़ादाना खानाबदोश और नीम खानाबदोश जातों की तारीखी अहमियत और हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ जिले सतह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। वजीर असीम अरुण ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में आज़ाद जातों की शराकत में बेमिसाल रही है और ये दिन उनकी तारीखी जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश करने उन्हें कौमी धारे में जम करने के लिए फलाही स्कीमों के बारे में मालूमात फैलाने का एक अहम मौका है। हरियाणवी गुलकार अंकित वालियान के कत्ल केस में फरार 2 मुजरिम आसूब शामली में पुलिस मुकाबले में मारे गए। इन दोनों निशानाबाजों पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। पुलिस उनकी तलाश में थी। तसादुम में 2 कांस्टेबल जख्मी भी हुए हैं। हापुड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर बदामन से दिल्ली जाने वाली एक कार संभोली थाना इलाके के हाजीपुर गांव के करीब बेकाबू होकर उलट गई। चार अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक नौजवान शदीद

0: जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जायवकू पर पहुंची, लाशों को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जख्मी नौजवान अस्पताल में जेरे इलाज है। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में सड़क हादसे पर 4 लोगों की मौत पर गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतल्लिका जिले के अफसरान को मुतासरीन को रिलीफ फराहम कराने की हिदायत की। वजीर आला ने यह भी हुक्म दिया कि मुतासर खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और उनसे राबता किया जाए। वजीर आला ने जख्मियों के जल्द सेहतियाबी की भी ख्वाहिश की है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत भर में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से कई नदियों के सतहआब में इजाफा हो रहा है। बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में दरियाए मंदाकिनी के पानी की सतह बुलंद होने के बाद राहत और बचाव के काम जंगी बुनियादों पर जारी है। वाराणसी जिला इंतजामिया ने गंगा और वरुणा नदियों के पानी की सतह मुमकिन इजाफे के पेश नजर 61 फील्ड फ्लड रिलीफ कैंप, 121 फ्लड पुलिस और 197 कश्तियों का इंतजाम किया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृहलक्ष्मी।
2: श्रोता सखियों को शबनम का प्यार भरा नमस्कार और मंजरी नमस्कार।
4: सखियों नमस्कार, शबनम जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: और इस खूबसूरत से मौसम में सखियों आपको तो अच्छा लगता होगा, रंग बिरंगे फूल हैं और चारों तरफ हरियाली है ना, और कुदरत की ये नज़ारे जो है ना मंजरी, हम सब के लिए बड़े खुशगवार हैं। लेकिन ऐसे भी तमाम लोग हैं जिनके लिए ये शायद इतना खूबसूरत नज़र ना आता हो।
4: बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जैसे कि हमारा पर्यावरण और इस सुंदर दुनिया का अनुभव करने के लिए शरीर और उसमें भी सबसे बड़ी हमारी आंखें।
2: और देखिए सखियों, हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास हमारी आंखें हैं जिससे हम इस दुनिया को देख सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये रोशनी जो है ना एक सपना सा है, वो देख ही नहीं सकते कि रंग कैसे होते हैं। तो अगर हम आज एक संकल्प लें तो ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि हम किसी की जिंदगी रोशन कर सकें।
4: बिल्कुल सखियों, हम जीवन भर दान धर्म करते हैं, लेकिन दान का मतलब हम सिर्फ पैसे से खरीदी गई चीज़ों को ही समझते हैं। पर आप खुद सोचिए कि क्या उस दान का कोई मुकाबला है जो पैसों से भी नहीं मिल सकता। वह दान है वह अनमोल उपहार जो ईश्वर ने हमें शरीर के रूप में दिया है। शरीर का हर अंग अनमोल है और मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है। अगर हम उन्हें मृत्यु के बाद किसी को दान कर दें तो हमारी जीवन में जो अब नहीं काम में है वो किसी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी।
2: बिल्कुल सही बात है मंजरी, कहते हैं कि नेत्रदान महादान होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु उपरांत, या आज आपको संकल्प लेना है कि हम अपने नेत्रदान करेंगे, तो किसी डॉक्टर का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के नेत्रदान से, उस नेत्रदान में लोगों को कभी कभी ये होता है ना कि पूरी आंख निकाली जाती है, ऐसा नहीं होता, बस एक पुतली निकाली जाती है और एक पुतली से 2 लोगों की जिंदगी रोशन की जा सकती है। तो ये फैसला हमें आज अपनी जिंदगी में लेना है। हाँ। और इसका फायदा जो है, मेरे मत कहते हैं ना कि मृत्यु के उपरांत भी इस दुनिया को हमारी आंखें देख सकती है।
4: बिल्कुल, और अपने परिवार वालों को भी इस फैसले के बारे में बताना है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो डॉक्टर्स को बताना है, आई बैंक को सूचित करना, ये हमारे परिजन ही करेंगे। तो अपने परिवारजनों को विश्वास में लें और ये बातें उन्हें बताएं और साथ ही उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वो भी ऐसा करें।
2: बिल्कुल, और इसके लिए करना क्या है कि आप पहले तो संकल्प लें, फिर फॉर्म भरें और मृत्यु के उपरांत कहते हैं कि 6 से 8 घंटे के भीतर कॉर्निया निकाला जाता है। और इसमें किसी भी उम्र के, किसी भी लिंग के, किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। यहाँ तक कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अभी संकल्प लेना है ताकि आपकी जिंदगी मरने के बाद भी खूबसूरत नजर आए।

0: बिल्कुल।
1: तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपनी सखियों को एक खूबसूरत सा गीत सुनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं सखियों ये गीत।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: शबनम जी, हम में से बहुत सारी सखियां ऐसी हैं ना कि जो अपने घर की जिम्मेदारियों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि बहुत गुणी होने पे भी, बहुत टैलेंटेड होने पे भी वो कुछ बाहर निकल के नहीं कर पाती हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चाहत तो जरूर लगी रहती है कि हमारी भी एक पहचान हो।
5: बिल्कुल। और कुछ सही बात है कि देखिए हमेशा बाहर ही काम करना जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप कुछ करना चाहती हैं, तो कुछ चीज़ें आप घर से भी कर सकती हैं, आपने स्वयं रोजगार कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ चाहते हैं लेकिन हमें सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है।
4: बिजनेस के बारे में जैसे आपने कहा कि कुछ रोजगार कर सकती तो वो बहुत मन में कंफ्यूजिंग सा होता है कि अब क्या करें, कैसे करें, शुरुआत करें, मतलब एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता
5: तो
4: है।
5: आज कर देते हैं हम लोग।
4: तो आज सखियों आपके लिए मतलब बहुत प्रोत्साहन वाली बात, बहुत जानकारी वाली बातचीत हम लेके आए हैं और बातचीत का विषय है स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए नए अवसर, और महिला उद्यमी राखी जायसवाल से बात कर रही हैं सुरेखा सिंह।
5: तो चलिए सुनते।
6: आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं राखी जायसवाल जी, जो कि एक सफल उद्यमी हैं और विगत 25 वर्षों से अपना रोजगार कर रही हैं। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद सुरेखा जी।
6: राखी जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है?
7: देखिए, मेरी स्कूलिंग तो भदोही से हुई और 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन बसंता कॉलेज से किया, जो कि BHU से एफिलेटेड है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया। और मैंने पढ़ाई के बाद जो है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए जो उस समय चल रहे थे कोर्सेज, तो मैंने स्किल से रिलेटेड काफी कोर्सेज किए।
6: तो आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आपके मन में ये विचार कब से आया कि आपको अपना कुछ करना चाहिए?
7: एक्चुअली शुरू में तो मैं हाउसवाइफ ही थी, मैंने स्टार्टिंग में मतलब जब मेरी शादी हुई तो उस समय मैं सिर्फ अपने घर परिवार और बच्चों को ही देख रही थी, क्योंकि उस समय ज्वाइंट फैमिली थी और मेरे घर में बाहर काम करना अलाउड नहीं था, और
6: ज्वाइंट फैमिली होने के कारण
7: अलाउड नहीं था, और उस समय हस्बैंड बच्चे और घर की जिम्मेदारियां भी काफी थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब लोगों का अपना अलग अलग बिजनेस हो गया और फैमिली भी न्यूक्लियर हो गई, तो मेरे हस्बैंड अपना बिजनेस देख रहे थे, उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत हुई, तो उस समय मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया उनके सपोर्ट के लिए।
6: अच्छा, तो पहले आप अपने पति को सपोर्ट करती थी उनके बिजनेस में?
7: हाँ जी, मैं उनके बिजनेस में सपोर्ट करती थी, स्टार्टिंग मेरी यहीं से हुई।
6: तो आपकी अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी?
7: मेरी शादी आज से 25-30 साल तो हो गए मेरी शादी हुए।
6: 30 साल हो गए जी। लंबा अरसा हो गया।
7: हाँ जी, हाँ जी, बहुत लंबा अरसा।
6: और आप काम कब से कर रही हैं अपना?
7: काम तो मेरे ख्याल से 22-23 साल तो हो गए होंगे काम करते।
6: आपके मन में ये विचार कब से आया कि आपको अपना भी कुछ करना चाहिए?
7: देखिए, फैमिली में जब खर्चे बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो ये हुआ, महसूस हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, चूंकि एजुकेशन तो अच्छी थी मेरी और कोई यूज नहीं हो रहा था उसका, तो जब मौका मिला तो मैंने अपना व्यवसाय करना शुरू किया।
6: आपके मन में ये विचार कब से आया कि आपको अपना भी कुछ करना चाहिए?
7: देखिए, स्टार्टिंग में हमारा ऑटो पार्ट्स का काम था और काफी अच्छा बिजनेस था और कई एजेंसियां हमारे पास थी, लेकिन धीरे धीरे कई एजेंसियां बंद हो गई, और क्योंकि जो कंपनी थी उन्होंने पार्ट्स वगैरह

0: बनाना बंद कर दिया। तो काफी स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो उस समय जो है मैंने ये डिसीजन लिया कि हम जो है इसको स्विच करते हैं और कुछ और इसमें कुछ और करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने हेलमेट और ये टायर के बिजनेस में हम लोगों ने कदम रखा, और जो कि काफी सक्सेस रहा।
1: तो ये
0: और
1: आपका अपना निर्णय था?
0: हाँ जी, आइए, मेरा मेरा निर्णय था और निर्णय बिल्कुल सही था।
1: तो
0: और
1: आपके पति को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा होगा कि मेरी पत्नी अब धीरे धीरे उद्यमी हो रही है।
0: हाँ, उनको बहुत अच्छा लगा। वैसे फैमिली नहीं चाहती थी, लेकिन ये मतलब मेरे हस्बैंड चाहते थे कि ये काम करें, बाहर जाएं, अपना कुछ अपना स्टेटस हो समाज में, आप कुछ अपने से आत्मनिर्भर हो। तो ये मेरे हस्बैंड का जो है व्यू था शुरू से ही, तो उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया इसमें।
1: आपके परिवार में और कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, बेटा है और 2 बेटियां हैं। हाँ, मेरी स्कूलिंग तो काफी अच्छी थी और मेरी एजुकेशन भी काफी अच्छी थी, लेकिन स्टार्टिंग तो मैंने काफी लेट से किया, तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही काफी अच्छी एजुकेशन दी और आज सब वेल सेटल्ड हैं। हाँ
1: मतलब आपको ये समझ में आता था कि बच्चों का पढ़ा लिखा होना और आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक हो।
0: पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और अब देखिए, बेटे और बेटियों में तो कोई भेद नहीं होता है, और वैसा मैंने भी नहीं किया। अपनी बेटियों को किसी भी फील्ड में, मैंने हर फील्ड में उनको आगे बढ़ाया, और जहां
1: और
0: सपोर्ट की जरूरत हुई मैंने उनको सपोर्ट दिया। इस वजह से आज वो खुद आत्मनिर्भर हैं और बहुत अच्छे से सेटल हैं।
1: आप अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में कुछ बताइए।
0: जी, मेरा तो इस समय हेलमेट का काफी अच्छा शोरूम है, लेकिन उसके साथ ही मैंने ये सोचा कि कुछ जो है बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। मतलब अभी टाइम हो गया काफी, ये मतलब जो हम लोग ने नया बिजनेस सेटल किया, तो ये जब से ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, बनारस में टूरिज्म काफी अच्छा हो गया है, तो टूरिज्म को देखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम मेरे पास जो जमीन थी, बना हुआ कुछ एरिया था, बिल्डअप एरिया था, हम लोग मैंने सोचा कि उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं स्टे होम में। तो
1: अच्छा, ये
0: वैसा
1: आजकल
0: हाँ
1: वाराणसी में काफी है कि अगर किसी के पास जगह है, अच्छी जगह है, तो ये एक नया बिजनेस है और गवर्नमेंट भी इसे काफी सपोर्ट कर रही
0: हाँ
1: है।
0: जी, गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट ने काफी सुविधाएं भी दी हुई हैं, और स्पेशली स्टे होम है, पेइंग गेस्ट है, मतलब पेइंग गेस्ट जो बना रहे हैं वो होटलों की अपेक्षा काफी जो है उसमें रियायत दी हुई है, तो उसका काफी फायदा हम लोगों को मिलता है, क्योंकि टैक्स वगैरह नहीं लगता है जो कमर्शियल टैक्स होता है। तो ये बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले, ये स्टे होम का, जो काफी सक्सेस है, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है, और मुझे लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही समय पर और सही डिसीजन लिया।
1: अच्छा, ये बताएं राखी जी कि आप जो ये व्यवसाय कर रही हैं, आपने जब निर्णय लिया तो जाहिर सी बात है कोई आवश्यक नहीं कि उस समय उतना पैसा हो ही आदमी के पास।
0: हाँ जी
1: कई सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, तो आपने अपने उन फाइनेंशियल चैलेंजेस को कैसे दूर किया?
0: देखिए, फाइनेंशियल चैलेंजेस तो मेरे सामने भी आए, हम लोगों ने उसके लिए बैंक से बात की और बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन मिल गया जिसके वजह से काम काफी आसान रहा। मैं जो है अपनी सखियों को या जो भी श्रोतागण है जो सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि बैंक जो है महिला उद्यमियों को या जो यंगस्टर हैं जो काम करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनको काफी सपोर्ट कर रही है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं उन्होंने चालू कर रखी हैं जिसके कारण वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
1: तो और क्या-क्या चैलेंजेस आए आपके सामने जब आपने ये काम शुरू किया?
0: देखिए, हम लोगों ने चूंकि बिल्डअप एरिया को ही कन्वर्ट किया था, इसलिए चैलेंजेस तो आए, क्योंकि आप जब न्यू कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसमें उसको बनाने में उतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ के बनाने में क्या होता है कि समय भी काफी लगता है और पैसा भी लगता है, तो ये चैलेंजेस तो थे हमारे सामने, लेकिन बट हम लोगों ने उसको फेस किया और

0: कंप्लीट किया
1: तो
0: अपना प्रोजेक्ट।
1: ये यानी ये बहुत अच्छी बात है कि एक महिला होने के नाते आपने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए और आज आप एक सफल उद्यमी हो गई हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई महिला अपना उद्यम शुरू करना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पहले तो सबसे सर्वप्रथम तो आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। और जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि क्या करना है, फिर उस दिशा में आप काम करना शुरू करिए कि वो कहाँ से हमें फाइनेंशियल, हम कहाँ से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं या कौन से संसाधन हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको काम को करने के लिए।
1: ये तो बात बिल्कुल सही है कि पहले अपना विजन क्लियर होना चाहिए, उसी के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार भी अब काफी कुछ सुविधाएं दे रही है, खास तौर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए।
0: हाँ जी, सरकार तो बहुत सुविधाएं दे रही है। मुझे लगता है मुद्रा लोन है और महिलाओं से भी रिलेटेड कुछ अलग से भी योजनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट महिलाओं को देना चाहती है कि महिलाएं अपने घर परिवार से बाहर निकलें, कुछ अपने लिए करें और स्वयं आत्मनिर्भर हों।
1: चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी श्रोताओं को?
0: मैं अपने श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी, विशेष रूप से महिला सखियां जो हैं हमारी, उनको कि वो घर पे अपना घर का काम करने के साथ ही वो आत्मनिर्भरता की ओर अवश्य कदम बढ़ाएं। तो जैसे किसी के घर में अपना बिजनेस होता है, कोई शॉप है या कुछ और भी बिजनेस है जहां वो सपोर्ट कर सकती है, पहले तो वो वहां पर सपोर्ट करें, कुछ बाहर निकलें। इसके अलावा आप जो है कई महिलाएं मिलके एक समूह बना सकती हैं। एक समूह के रूप में जब आदमी काम करता है तो ज्यादा ये पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा आप कलेक्ट करके आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके कोई काम शुरू कर सकते हो। और ये जो समूह वाले काम है, जैसे अचार है, पापड़ है, ये सब काम समूह में बहुत अच्छा महिलाएं कर सकती हैं और इसका रिस्पांस भी काफी अच्छा मिलता है और प्रॉफिट वगैरह भी काफी अच्छा होता है।
1: राखी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत सारी बातें हमसे और हमारी सखियों से शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए नया अवसर, महिला उद्यमी राखी जायसवाल से बात कर रही थी सुरेखा सिंह। और मंजरी, देखिए कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम से मिलती है जब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकती। और ये
1: बिल्कुल
2: बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि आपको फोर्स करने का एक तरीका है कि जब लोग बहुत कम आपको आंकने लगे ना, तो कुछ नया करके दिखाइए, फिर लगता है कि हाँ, जिंदगी इस तरह से भी जी जा सकती है।
3: बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो सीमाओं से हमारे परे होता है, तो मन को जो खुशी मिलती है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत खुशी मिलती है।
2: और दूसरे को भी आपसे प्रेरणा मिलती है।
3: बिल्कुल
2: और अगर हम आजकल की बात करें, प्रेरणा की बात करें, इस खूबसूरत से मौसम की बात करें, तो जब इतना अच्छा मौसम है, कुछ लोगों के लिए शायद दिक्कत हो जिन्हें बाहर निकलना हो, लेकिन जब जो घर में बैठे हैं और जिनके साथ गर्म चाय का प्याला भी हो और खूबसूरत से घटाओं की लहर चल रही हो, झिमझिम बारिश हो रही हो, तो ये खूबसूरत सा गीत उनके लिए तो भेज ही सकते हैं।
3: बिल्कुल
4: ओ सजना।

0: शबनम जी,
1: जी
0: आपने बारिश की इतनी सारी बात की और बहुत सुंदर सा गीत सुनवाया और इतना सुंदर चित्रण कर दिया, लेकिन एक बात बताइए, चाय के साथ बस चाय ही पियेंगे हम
1: नहीं, चाय के साथ चाय ही नहीं पीजिएगा। कुछ सखियों को पकौड़ी बहुत अच्छी
0: हाँ,
1: लगती है।
0: लेकिन पकौड़े के अलावा कुछ टेस्ट भी तो बदलना चाहिए ना।
1: हाँ, तो ढोकला बना सकते हैं।
0: अरे वाह
1: और सखियों, ये हेल्दी भी होता है, और जो लोग बहुत ज्यादा
0: जी,
1: तेल वेल कम खाना
0: हाँ
1: चाहते
0: जी,
1: हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, और बनाना भी बहुत आसान है। ढोकला बनाने के लिए बेसन तो चाहिए ही, उसे अच्छी तरह से छान लीजिए, उसमें नींबू का रस डालिए, या नींबू के फूल कहते हैं
0: जी
1: वो डाल लीजिए, और थोड़ी सी हल्दी डालिए, बहुत कम हल्दी डालिए, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और चुटकी भर नमक, और हरी मिर्च रख लीजिए, राई, करी पत्ता, और ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। वैसे जो सखियाँ बनाती हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो सखियाँ नहीं बनाती हैं उनके लिए बता दें कि अगर 1 कप आप बेसन लिए हैं तो उसी हिसाब से आपको 1 चुटकी नींबू का रस डालना है, मतलब 1 चुटकी नींबू के रस का जो फूल होता है जिसको बोलते हैं
0: जी
1: वो डालिए, या नींबू का रस डालिए 1 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी डालिए, इसे सब फेंट लीजिए, और जब आप उस ट्रे में रखने लगे, जैसे कि पानी गर्म करके रख लीजिए, और जब आप ढोकला बनाने के लिए तैयारी कर ली हैं तो थोड़ा देर पहले उसको सेट होने के लिए रख दीजिए फेंट करके। फिर जब रखने लगिए तो जिस ट्रे में या थाली में आपको जमाना है उसमें थोड़ी सी तेल या ग्रीसिंग कर लीजिए ताकि
0: जी
1: चिपके नहीं ढोकला, और फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के फटाफट फेंट करके रख दीजिए, और जब भाप निकलने लगे तो उसको थाली को उस भाप वाले बर्तन में जिसमें आपको स्टीम करना है उसमें रख दीजिए। जब अच्छी तरह से 10-15 मिनट मीडियम आंच पे स्टीम हो जाए तो किसी चाकू से या तीली से आप डाल के देखिए कि जैसे केक हम चेक करते हैं
0: जी
1: ना,
0: जी
1: वैसे चेक कर लीजिए, अगर वो तीली साफ निकल आई तो यानी कि आपका ढोकला पूरा परफेक्ट बन गया है। फिर आप उसे बाहर निकाल के रख लीजिए, जब ठंडा हो जाए तो उसे दूसरे बर्तन में डिमोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद तड़का बना लीजिए, थोड़ा सा तेल डाल करके उसमें राई, करी पत्ता, और अगर हींग पसंद है तो हींग, और अगर थोड़ा सा मीठा पसंद है तो चीनी डाल करके थोड़ा पानी डालिए, और इस तड़के को हरी मिर्च के साथ उस ढोकले के ऊपर डाल दीजिए, आपका ढोकला तैयार है। और फिर जैसा चाहे वैसा आकार में आप चौकोर काट लीजिए, और चटनी अगर हरी बना के रखी है तो उसके साथ खा लीजिए,
0: और
1: बस
0: मन भर के खाइए, क्योंकि पकोड़ा नहीं है
1: मन भर के, यानी दिल
0: मन
1: भर के
0: भर के
1: खाइए,
0: खाइए, दिल भर के
1: नाक
0: खाइए,
1: भर
0: क्योंकि क्योंकि पकोड़े से तो शबनम जी डर लगता है ना
1: नहीं
0: कि वेट बढ़ेगा, मगर
1: बिल्कुल
0: इसमें तो ये बात भी नहीं है। तो अब कार्यक्रम में चलने का भी समय हो गया है, तो अब चलते चलते हम सखियों से क्या कहेंगे शबनम जी?
1: बस यही कहेंगे कि अगर आप
0: हाँ
1: शॉपिंग करने वाली
0: जी,
1: हैं।
0: क्योंकि तीज त्यौहार शुरू हो चुका है और तीज भी आने वाला है, तो सखियाँ बहुत सारी शॉपिंग करेंगे,
1: जी
0: तो लेकिन ऐसे में अगर कुछ बातों का ध्यान रखे सखियों तो बहुत ही अच्छा होगा, बेवजह की शॉपिंग से बचना चाहिए।
1: बिल्कुल, और ये भी बात है कि समझदारी से किया हुआ हर काम काम आता है,
0: जी
1: चाहे वो आपकी खरीदारी हो या फिर जिंदगी की गाड़ी चलानी हो, तो समझदारी से अपनी जिंदगी बिताइए, और घड़ी इशारा कर रही है कि हम बहनों से विदा लें, तो कहते हैं
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सखियों के साथ
1: सखियों की बात
0: सखियों के जज्बात
2: गृह लक्ष्मी।
3: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं देवता देन सरोज। इनकी आवाज में आज आप सुनेंगे कजरी।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं देवता दीन सरोज और इनकी आवाज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कजरी।

देवता देन सरोज के गाए कजरी आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में। और अब आज के इस कार्यक्रम में ये आखिरी कजरी सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे देवता दीन सरोज। श्रोताओं, हम आपको बता दें इन्हीं के गाए लोकगीत आप शाम 6:30 में कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

0: Underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
3: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुक्कुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
4: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमीकॉन एक के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है।

0: तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: कॉन्फिडेंस टू दी ग्लोबल इंडस्ट्री।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
4: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
4: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर है। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
5: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
2: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी

0: बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज।

0: मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीत। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम है। हम आपको बताएंगे फिल्मों के नाम और उन्हीं फिल्मों के गीत को सुनने के लिए आप अपना संदेश हम तक पहुंचाएंगे। तो हमारी आज की फिल्में हैं सैया हमार, गोदना, विदेशिया और गंगा घाट। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लें, सैया हमार, गोदना, विदेशिया और गंगा घाट। और इन्हीं फिल्मों के गीत सुनने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हमसफर अंजना झा के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाएंगे सैया हमार फिल्म का गीत। और बहुत सारे व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। कुछ श्रोताओं के नाम हम गीत के पहले आपको बताए देते हैं। और ये संदेश आया है गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका। अगला संदेश पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, दिलदार नगर पश्चिम मोहल्ला से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह। संदेश आया दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। सुनना चाहा है गीत को जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और यहीं से आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा, प्रभात कुमार, सौरव कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। कोठुआ नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहाने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष और कपिल। और ये फरमाइश आई है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। सुनिए गीत, उसके बाद हम बाकी के संदेश पढ़ेंगे।

सैया हमार, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साधना सरगम और सोहम की आवाज़ें थी। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे गोदना फिल्म से, लेकिन उस गीत के पहले श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश पढ़ते हैं। ये संदेश आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अगला संदेश ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। संदेश है सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्ज़ापुर से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। गम्भरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ और यहीं से नीलोफर फातिमा। श्रोताओं, कुछ और संदेश हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको गीत सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले एक अनुरोध। अगर आपका संदेश शामिल हो चुका है या आपने कार्यक्रम में अपना संदेश भेज दिया है तो आज के कार्यक्रम में हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। कृपया दोबारा आज के कार्यक्रम में आप अपना संदेश न भेजें और कोशिश करें कि आपका

संदेश 2:50 तक हम तक पहुंच जाए ताकि हम गीत में आपके नाम को शामिल कर पाएं। कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री सारंग, ओमनाथ शिवांग, अदिति और निर्मला त्रिपाठी। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसोल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के का ये व्हाट्सएप संदेश। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा, दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफताब अंसारी, मेहताब अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। ग्राम बहुवरा दिलदार नगर से अक्लू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि और अश्विन शाह। यहीं से मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। सोनवर्षा खानपुर मिर्जापुर से अक्षय राजभर और आशु। संदेश आया थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। ये संदेश है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। और ये संदेश आया अमितेश कुमार तिवारी का करनई बलिया से। और अब आपको सुनवा रहे हैं गोदना फिल्म का ये गीत।

गोदना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और अब सुनवाएंगे आपको हम विदेशिया फिल्म का गीत। और कुछ श्रोताओं के संदेश उनके नाम पढ़ते हैं। ये व्हाट्सएप संदेश आया ग्राम चक फुटही असनाव बाजार भदोई से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार। ग्राम पिपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से। रमेश विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु, प्रीत, प्रांजल, प्रकृति और दीपेश ग्राम मेहंदीगंज मड़ई राजा तालाब वाराणसी से। और अजय विश्वकर्मा, शीला विश्वकर्मा, अंश विश्वकर्मा, अंशिका ग्राम केसरीपुर भास्करा तालाब रोहनिया वाराणसी से। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, प्रेमगोप, कपिलगोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल वर्मा और यशस्वी। ये संदेश आया विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति का। जलालीपुरा वाराणसी से आपने ये संदेश भेजा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल। कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। बपुरा गाजीपुर से आशुतोष गिरी, तोजो, अभिषेक, रंजना गिरी और कृष्णा। और यहीं से एक नाम और है शिवम का। नलेश्वर नगर नलवेड़ महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान, आशीष और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये संदेश छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा का।

गीता दत्त कौमुदी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बिदेसिया फिल्म का गीत, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाएंगे गंगा घाट फिल्म से। और उसके पहले उन श्रोताओं के नाम हम आपको बताए देते हैं जिनके संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। ये संदेश आया इफ्तिखार अहमद मोहम्मद कैफ मोहम्मद सैफ नई बाजार चंदौली से, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल स्वाति जायसवाल देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी सलीम जावेद शाहिद हसन आजमी और शमीम अख्तर अंसारी, कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार साई गायकवाड़, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा हनुमान और उत्तम जामदाड़े, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता, भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा दतरेंगी से, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयानंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद, राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी पूनम और प्रतिज्ञा, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयानंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद, राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी पूनम केशरी और प्रतिभा केशरी। और ये संदेश आया है गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जैस

0: अभी अभी संदेश आया, शाहकुटी मुगल सराय से सोनू और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल का। और ये संदेश है वाराणसी से विनय श्रीवास्तव, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार।
1: हम दिल लचके ला, हम दिल लचके कमरिया कदर कई ला हो, कदर कई ना। हम दिल लचके ला, हम दिल लचके कमरिया कदर कई ना।
0: दिलदार नगर गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह। श्रोताओं, कार्यक्रम में संदेश भेजने का समय अब खत्म हो चला है, कृपया अब संदेश न भेजें, अगले कार्यक्रम में आप अपना संदेश हमें भेजें। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित, रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, दानिश अंसारी। और ये रिपीट संदेश है इसलिए हम इसे शामिल नहीं कर रहे हैं, आप गीत सुनें।

विक्रम, जो कि आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित था, और हम आपको सुनवा रहे थे भोजपुरी फिल्म संगीत। आप ये गीत सुनिए और आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो हमसफर अंजना झा को।

0: अरे गजब कैलू रानी,
1: उमर कैला हो कदर कैला हमरी लटकेला।
2: श्रोताओं, ये था आज का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर, डीटीएच और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मैंने प्यार किया इस फिल्म के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। गीत असद भोपाली का, संगीत राम लक्ष्मण का।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया। इस फिल्म का गाना गीत लिखा था असद भोपाली ने, संगीत से सवारा था राम लक्ष्मण ने। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है 3 इडियट। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत से सवारा है शांतनु मोइत्रा ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

थ्री इडियट फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत स्वानंद किरकिरे का था और संगीत से सवारा था शांतनु मोहित्रा ने। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सनम रे, इस फिल्म का प्यारा सा गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत और संगीत है मिथुन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

सनम रे। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत संगीत मिथुन का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों जरा सोचिए, सुबह उठते ही अलार्म बंद करने से लेकर रात को सोने से पहले आखिरी बार मोबाइल देखने तक हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा आज इस छोटी सी स्क्रीन के भीतर सिमट गया है। खरीदारी हो, बैंकिंग हो, टिकट की बुकिंग हो, या किसी दूर बैठे अपने से बातचीत, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है।
1: और सुविधा तो इतनी कि बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं, और कई बार तो टिकट की लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं। लेकिन क्या इस डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा भी उतनी ही आसान है दोस्तों?
0: क्योंकि जिस इंटरनेट पर हम भरोसे के साथ अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं, उसी दुनिया में कुछ लोग हमारी एक छोटी सी चूक का इंतजार कर रहे होते हैं। कभी फर्जी लिंक के रूप में, तो कभी किसी अनजान कॉल के रूप में, या फिर कभी किसी आकर्षक ऑफर के पीछे छिपे धोखे के रूप में।
1: यानी एक गलत के क्लिक, एक अनजान लिंक, या फिर जल्दबाजी में साझा किया गया एक ओटीपी भी, और बस इतने से ही कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में समझ लीजिए कि हमारी मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है।
0: इसीलिए ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ स्मार्ट यूजर होना काफी नहीं।

0: स्मार्ट और अलर्ट यूजर होना भी जरूरी है। एक क्लिक और टिकट आपके हाथों में, एक टैप और पैसे पल भर में ट्रांसफर। लेकिन यही एक क्लिक और एक टैप अगर लापरवाही से किया जाए तो परेशानी की वजह भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, डिजिटल दुनिया ने जिंदगी आसान तो की है, लेकिन इसके साथ साइबर धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है दोस्तों। कभी फर्जी लिंक, कभी नकली कॉल और कभी आकर्षक ऑफर के पीछे छिपा ये साइबर फ्रॉड।
0: तो सवाल है, ऑनलाइन रहें लेकिन सुरक्षित कैसे रहें?
1: तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब मिलेगा आपको भी, पर उससे पहले अपने इन दोनों दोस्तों का इस्तकबाल तो कर लीजिए, जिसमें मैं हूँ आज आपके साथ तैयबा मारूफ
0: और मैं हूँ जयशालिनी। तो साथियों, स्वीकार करिए हमारा प्रेम भरा नमस्कार।

0: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
1: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
2: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था,
1: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
3: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए, नए जमाने का,
1: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ,
5: औरों को भी सिखाओ।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
8: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए
11: 0542227658।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
12: दोस्तों जरा सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, तुम्हारी ये तस्वीर कितनी खराब है। फिर दूसरा, तीसरा, और देखते ही देखते मजाक, ताने और अपमान का सिलसिला शुरू हो जाता है। चेहरा सामने नहीं, आवाज सामने नहीं, लेकिन शब्द सीधे दिल पर चोट करते हैं। यही है साइबर बुलिंग, यानी डिजिटल दुनिया में किसी को डराना, अपमानित करना, धमकाना या लगातार परेशान करना।
13: बिल्कुल, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमने जिस इंटरनेट को ज्ञान, दोस्ती और मनोरंजन का माध्यम बनाया है, वही कभी कभी किसी के लिए मानसिक दबाव यानी कि मेंटल प्रेशर की वजह भी बन जाता है। क्योंकि साइबर बुलिंग केवल गाली गलौज तक तो सीमित नहीं है। किसी की निजी तस्वीर या वीडियो बिना अनुमति के साझा कर देना, फेक अकाउंट बनाकर उसको बदनाम करना, लगातार ट्रॉल करना, धमकी भरे संदेश भेजना और किसी को ऑनलाइन ग्रुप से जानबूझकर अलग करना, ये सब जो है ना, इसी के रूप हो सकते हैं।
12: और यहाँ एक बात याद रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया में की गई गलती भी वास्तविक जीवन में असर डालती है, इसलिए सुरक्षा की पहली सीढ़ी है सोचिए फिर ही क्लिक करिए।
13: बिल्कुल, तो अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें, हर अकाउंट के लिए एक मजबूत और अलग पासवर्ड रखें, और जहां तक संभव हो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। किसी अनजान लिंक, संदिग्ध ईमेल या ऐसे संदेश जिनमें तुरंत क्लिक करने की या व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा जाता है, उनसे तो सावधान रहें, सतर्क रहें।
12: और सोशल मीडिया पर मेरी जिंदगी की हर बात सबको पता हो, इस सोच को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। अपना लोकेशन, फ़ोन नंबर, निजी तस्वीरें और संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने से पहले ज़रा सोचिए कि क्या ये जानकारी सचमुच सबके

0: लिए है भी।
1: और अगर कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है तो चुप रहना तो समाधान बिल्कुल भी नहीं है। सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें, उस व्यक्ति को ब्लॉक और रिपोर्ट करें उसकी, और जरूरत पड़ने पर माता पिता, अपने शिक्षक या किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति या फिर किसी संबंधित अथॉरिटी से आप मदद ले लें।
0: याद रखिए दोस्तों, साइबर बुलिंग आपकी गलती नहीं है और मदद मांगना कमजोरी नहीं समझदारी है।
1: इंटरनेट की दुनिया तो बहुत बड़ी है लेकिन उसमें सुरक्षित रहना हमारी जिम्मेदारी है।
0: और अगली बार जब भी कोई अनजान लिंक आपके सामने आए
1: या कोई ऑनलाइन संदेश आपको असहज करे
0: तो रुकिए, सोचिए और फिर कदम उठाइए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हमारी सबसे मजबूत सुरक्षा कोई ऐप नहीं
1: बल्कि हमारी सजगता और समझदारी होती है।
0: इसीलिए दोस्तों, ऑनलाइन रहें लेकिन सावधानी के साथ, जुड़े रहें लेकिन सुरक्षित रहकर।
1: बिल्कुल। अच्छा जयशालिनी, वैसे कभी कभी ना कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस एक धुन बजती है और मन में ना अपने आप उस एहसास तक पहुंचने को मजबूर हो जाता है हमारा मन, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है।
0: तो क्यों ना बातचीत के सिलसिले में थोड़ा सा संगीत घोल दिया जाए, कुछ पल आपके, कुछ पल हमारे, और इन पलों को यादगार बनाने के लिए खूबसूरत नगमा।
1: तो मेरे दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए सुरों की इस छोटी सी सैर पर हमारे साथ चलने के लिए। तो लीजिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों कहते हैं हुनर हाथों में हो तो अवसरों की कमी नहीं होती, लेकिन कई बार हुनर तो होता है, बस उसे सही दिशा, सही प्रशिक्षण और सही मंच की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, और आज का युवा सपने तो देखता है अपने पैरों पर खड़े होने के, अपने हुनर को पहचान दिलाने की और एक बेहतर भविष्य बनाने की। लेकिन सवाल है, क्या केवल डिग्री ही रोजगार की चाबी है, या कोई हुनर भी उस दरवाजे को खोल सकता है?
0: और इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए हम आज बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो युवाओं को उनके हुनर को निखारने और उसे रोजगार के अवसरों में जोड़ने की दिशा में काम करता है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की।
1: तो मेरे दोस्तों, आइए समझते हैं हमारे आज की जो वार्ताकार हैं नेहा, इनसे कि कैसे एक प्रशिक्षण, एक नया कौशल और एक सही अवसर किसी युवा के भविष्य की दिशा बदल सकता है।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के कार्यक्रम युवा वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी साथी नेहा मिश्रा, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो आज के युवा, उनके सपनों और उनके भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हुनर से रोजगार तक। दोस्तों, आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन केवल डिग्री का होना ही पर्याप्त नहीं है। बदलती अर्थव्यवस्था, नई तकनीक और रोजगार के बदलते स्वरूप ने यह आवश्यकता पैदा की है कि युवाओं के पास शिक्षा के साथ साथ ऐसा कौशल भी हो जिसकी बाजार में मांग हो। आज कंपनियां केवल यह नहीं देखती कि आपने कितनी पढ़ाई की है, बल्कि यह भी देखती है कि आपने ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, किसी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं और काम को कितनी कुशलता से कर सकते हैं। यही वह जगह है जहां कौशल विकास की भूमिका सामने आ। भारत एक युवा देश है, हमारे पास बड़ी युवा आबादी है और यही युवा भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन युवा शक्ति तभी राष्ट्र की शक्ति बनती है जब उसे सही दिशा, सही प्रशिक्षण और सही अवसर मिले। किसी युवा के भीतर प्रतिभा हो, मेहनत करने की इच्छा हो, लेकिन उसके पास रोजगार के लिए आवश्यक तकनीकी या व्यवसायिक कौशल ना हो तो उसकी क्षमता पूरी तरह सामने नहीं आ पाती। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल किया और युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य युवाओं को उद्योग संगत कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार तथा आजीविका के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है। समय के साथ इस योजना के अलग अलग चरण सामने आए और अनुभवों के आधार पर इसमें बदलाव भी किए गए। वर्तमान चरण PMKVY 4.0 में कौशल प्रशिक्षण को अधिक लचीला, तकनीकी सक्षम, बाजारों उन्मुख और रोजगार केंद्रित बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। आधिकारिक दिशा निर्देशों में उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण, युवाओं की रोजगार योग्यता बढ़ाना, डिजिटल तकनीकी का उपयोग, समावेशी प्रशिक्षण और बदलती बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप अपस्किलिंग तथा रीस्किलिंग जैसे पहलुओं पर जोर दिया गया है। अब जरा एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि कौशल और रोजगार के बीच संबंध क्या है। मान लीजिए किसी छोटे शहर की एक युवती ने 12वीं तक की पढ़ाई की है, उसे सिलाई में रुचि है और वह अपने घर से ही कुछ कपड़े तैयार करके बेचती है। उसके पास हुनर है, लेकिन डिजाइन, आधुनिक मशीनों, बाजार की मांग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बिक्री और छोटे व्यवसाय को संचालित करने की पर्याप्त जानकारी नहीं है। यदि उसे व्यवस्थित प्रशिक्षण मिलता है तो वही हुनर एक छोटे घरेलू काम से आगे बढ़कर स्वरोजगार का माध्यम बन सकता है। वह अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकती है, दूसरे लोगों को रोजगार दे सकती है और धीरे धीरे अपना व्यवसाय विकसित कर सकती है। यानी कौशल केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, यह स्वरोजगार और उद्यमिता का रास्ता भी खोल सकता है। इसी तरह एक युवक को इलेक्ट्रिकल काम आता है, लेकिन यदि वह आधुनिक उपकरणों, सुरक्षा मानकों और नई तकनीकों से परिचित नहीं है तो उसके अवसर सीमित हो सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से वह अपने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कौशल में बदल सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स

आईटी, ड्रोन और सौर ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं और अनेक दूसरे क्षेत्रों में नए प्रकार के कौशल की मांग बढ़ रही है। इसलिए आज सवाल केवल यह नहीं है कि काम कहाँ मिलेगा, बल्कि सवाल यह भी है कि मेरे पास ऐसा कौन सा कौशल है जिसकी जरूरत आने वाले समय में होगी। यही सोच कौशल विकास की अवधारणा को महत्वपूर्ण बनाती है। और कौशल विकास का अर्थ केवल किसी मशीन को चलाना या कोई तकनीकी काम सीखना नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी, समय प्रबंधन और कार्यस्थल के व्यवहार जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आज किसी भी क्षेत्र में सफलता केवल तकनीकी जानकारी से नहीं मिलती। एक अच्छे कर्मचारी को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने, टीम के साथ काम करने, ग्राहक को समझने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रशिक्षण को रोजगार की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ना। यदि किसी क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के कौशल की मांग है तो प्रशिक्षण भी उसी दिशा में होना चाहिए। PMKVY 4.0 के आधिकारिक ढांचे में मार्केट ओरिएंटेड और डिमांड ड्राइवन स्किल तथा इंडस्ट्री रेलिवेंट करिकुलम पर जोर दिया गया है। साथ ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी काम करते हुए सीखने के अवसरों को भी महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि युवा केवल कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त न करें बल्कि वास्तविक कार्य परिस्थिति को भी समझें। आज कौशल विकास का एक नया आयाम है डिजिटल तकनीक। हम ऐसे समय में हैं जहां लगभग हर क्षेत्र तकनीकी से प्रभावित हो रहा है। खेती से लेकर बैंकिंग तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक और छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े उद्योग तक डिजिटल तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। इसलिए आज के युवा के लिए डिजिटल साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। स्किल इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम और कौशल संबंधी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा प्लेटफॉर्म को बहुभाषी और कैरियर फोकस्ड बनाने पर भी जोर दिया गया है। यह परिवर्तन खासकर उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। पहले अच्छे प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। आज डिजिटल माध्यमों के कारण सीखने के कई अवसर मोबाइल फोन तक पहुंच गए हैं। हालांकि डिजिटल संसाधनों तक पहुंच अभी भी हर व्यक्ति के लिए समान नहीं है। इसलिए कौशल विकास के साथ डिजिटल पहुंच और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी है, तभी देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवा भी इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। कौशल विकास में महिलाओं की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं केवल पारंपरिक क्षेत्रों तथा सीमित नहीं है, वे तकनीकी क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, पर्यटन, फैशन डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन तकनीकी और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। PMKVY 4.0 के उद्देश्यों में महिलाओं सहित वंचित और हाशिए के समुदायों तक कौशल प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ाने तथा उन्हें वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। एक महिला के लिए कौशल केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का माध्यम भी बन सकता है। जब किसी महिला के पास अपने कौशल के आधार पर आय अर्जित करने की क्षमता आती है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और परिवार तथा समाज में उसकी निर्णय क्षमता भी मजबूत हो सकती है। यही कारण है कि कौशल विकास को केवल आर्थिक कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है, क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना ही रोजगार की गारंटी है? इसका उत्तर है जरूरी नहीं। प्रशिक्षण रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उसके साथ कई दूसरी चीजें भी जरूरी हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, प्रशिक्षित कौशल की बाजार में मांग होनी चाहिए, प्रमाणन विश्वसनीय होना चाहिए, उद्योग से संपर्क होना चाहिए और प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार के लिए उचित मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। PMKVY 4.0 में इसी कारण क्वालिटी ट्रेनिंग, स्टैंडर्डलाइज्ड असेसमेंट और इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम जैसे पहलुओं पर जोर दिया गया है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चुनौती है स्किल मिसमैच, यानी युवा के पास एक कौशल हो लेकिन बाजार में उस कौशल की मांग कम हो और दूसरी ओर उद्योग को जिन कौशलों की जरूरत हो उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की कमी हो। इसलिए कौशल प्रशिक्षण को समय के साथ बदलना आवश्यक है। आज जो कौशल उपयोगी है संभव है कि कुछ वर्षों बाद उसमें नई तकनीकें जुड़ जाए। इसलिए युवाओं के लिए केवल एक बार प्रशिक्षण लेना पर्याप्त नहीं है, उन्हें लगातार सीखते रहना होगा। इसी को आज

भाषा में अप स्केलिंग और रिस्क स्केलिंग कहा जाता है। PMKVY 4.0 में लाइफ लॉन्ग स्केलिंग की इसी आवश्यकता को महत्व दिया गया है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं जैसे क्षेत्र तेजी से बदल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मशीनें इंसानों के सभी काम खत्म कर देंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि काम का स्वरूप बदलेगा और नए प्रकार के कौशल की आवश्यकता पैदा होगी। जो युवा तकनीकी को समझेंगे, उसके साथ काम करना सीखेंगे और समय के साथ अपने कौशल को अपडेट करेंगे, उनके लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। इसलिए आज के युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है सीखते रहने की क्षमता। कौशल विकास का संबंध केवल बड़े उद्योगों से भी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसाय, कारीगर, हस्तशिल्प, पारंपरिक पेशे और स्थानीय सेवाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी कारीगर के पारंपरिक हुनर को आधुनिक डिजाइन, पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स से जोड़ दिया जाए तो उसका बाजार कई गुना बढ़ सकता है। किसी ग्रामीण युवा को स्थानीय पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण या कृषि आधारित उद्यम का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। इस दृष्टि से कौशल विकास का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि युवा रोजगार खोजने वाला ही न बने बल्कि अवसर पैदा करने वाला भी बने। अब बात करते हैं युवाओं की अपनी भूमिका की। सरकारी योजनाएं अवसर दे सकती हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं और संस्थागत सहायता प्रदान कर सकती हैं, लेकिन उन अवसर को सफलता में बदलने के लिए युवा की इच्छा और मेहनत भी जरूरी है। इसलिए यदि आप युवा हैं और अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मुझे किस काम में रुचि है, मेरी क्षमता क्या है, मेरे क्षेत्र में किस प्रकार के काम की मांग है और अगले 5 या 10 वर्षों में उस क्षेत्र का भविष्य कैसा होगा। इन सवालों के उत्तर आपको सही कौशल चुनने में मदद कर सकते हैं। एक और बात, हुनर छोटा हो या बड़ा नहीं होता। किसी के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौशल हो सकता है, किसी के लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, किसी के लिए फूड प्रोसेसिंग, किसी के लिए ब्यूटी और वेलनेस, किसी के लिए मशीन संचालन और किसी के लिए हस्तशिल्प। महत्वपूर्ण यह है कि वह कौशल गुणवत्तापूर्ण हो, व्यक्ति उसे लगातार विकसित करे और उसे सम्मानजनक आजीविका से जोड़ सके। हमें अपने समाज में कौशल आधारित काम को लेकर बनी मानसिकता पर भी विचार करना होगा। कई बार हम नौकरी को केवल सरकारी या कार्यालयी नौकरी के रूप में देखते हैं और तकनीकी या व्यवसायिक काम को कम महत्व देते हैं, लेकिन एक कुशल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तकनीशियन, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, सेल्फ डिजाइनर या डिजिटल सेवा प्रदाता भी अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक अर्थव्यवस्था को लेकर केवल डिग्रीधारी युवाओं की ही नहीं बल्कि कुशल युवाओं की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं हाथ के हुनर और दिमाग के ज्ञान के बीच भेद करने के बजाय दोनों के सम्मान की संस्कृति विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसी व्यापक सोच की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी सोच जिसमें युवा केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि काम के योग्य कौशल मिले, केवल नौकरी की तलाश नहीं बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिखाई दे और केवल आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी हो। तो श्रोताओं, आज की बातचीत का सार बहुत सरल है। हुनर अवसर का दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना, मेहनत और सही दिशा जरूरी है। सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब युवा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण चुनें और प्रशिक्षण के बाद मिले कौशल को वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करें। आज भारत के सामने एक और बड़ी युवा आबादी की चुनौती है तो दूसरी ओर यही युवा आबादी एक बहुत बड़ा अवसर भी है। यदि युवाओं को सही कौशल, सही प्रशिक्षण और सही अवसर मिलते हैं तो यही युवा देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, सेवा क्षेत्र और उद्यमिता को नई गति दे सकते हैं। इसलिए कौशल विकास केवल एक योजना का विषय नहीं, यह भारत के भविष्य का विषय है। और अंत में मैं युवाओं से बस इतना कहना चाहूंगी, अपनी डिग्री पर गर्व कीजिए लेकिन अपने हुनर को भी पहचानिए। कोई एक कौशल सीखिए, उसे बेहतर बनाइए, नई तकनीक से जुड़िए और सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी ताकत केवल यह नहीं है कि मैं क्या जानता हूँ बल्कि यह भी है कि मैं नया क्या सीख सकता हूँ।

0: युवा के हाथ में जब हुनर आता है तो उसके सामने केवल नौकरी का एक रास्ता नहीं खुलता, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और अपने भविष्य को स्वयं गढ़ने की संभावना खुलती है। यही कौशल विकास की असली भावना है। हुनर से आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से अवसर और अवसर से रोजगार तक की यात्रा। इसी विश्वास के साथ आज की युवाणी वार्ता को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको अपने कौशल को पहचानने, उसे विकसित करने और अपने सपनों को वास्तविक अवसरों में बदलने के लिए प्रेरित करेगी। मैं हूं आपकी अपनी साथी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: तो धन्यवाद नेहा। तो दोस्तों, आज की बातचीत से इतना स्पष्ट है कि हुनर केवल हाथों की काबिलियत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने की ताकत भी है।
2: और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहल का उद्देश्य भी यही है कि युवाओं के भीतर मौजूद क्षमता को प्रशिक्षण के माध्यम से तराशा जाए ताकि उनका हुनर सिर्फ हुनर बनकर न रह जाए बल्कि रोजगार और बेहतर भविष्य का माध्यम भी बने।
1: क्योंकि अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर हुनर हो तो उस दरवाजे तक पहुँचने का रास्ता जरूर बनाया जा सकता
2: क्योंकि
1: है।
2: मेरे दोस्तों, डिग्री आपको ज्ञान जरूर दे सकती है लेकिन हुनर जो होता है वो उस ज्ञान को अवसर में बदलने की ताकत रखता है।
1: अपने हुनर को पहचानिए, उसे निखारिए और सीखने की प्रक्रिया को कभी मत रोकिए, क्योंकि जब हुनर को सही दिशा मिलती है तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं।
2: और मेरे दोस्तों, अगली जानकारी तक के लिए आप आनंद उठाइए इस गीत का।
3: एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: दोस्तों अभी वक्त नहीं है झोला उठा के जाने का, अभी तो समय है कि आपसे और बातें की जाए और कुछ जानकारी भी साझा की जाए, जिसके लिए शब्दों का ज्ञान बेहद जरूरी है, क्योंकि हर शब्द अपने साथ सिर्फ एक अर्थ नहीं बल्कि सोचने का एक नया दृष्टिकोण भी लेकर आते हैं।
1: और इन सब के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमारी बातों में सार्थकता होनी चाहिए, और यही सार्थकता हमारा आज का हिंदी शब्द भी है, जिसका मतलब होता है किसी काम, किसी प्रयास या जीवन का उद्देश्यपूर्ण या अर्थपूर्ण होना। मसलन एक विद्यार्थी केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान हासिल करने के लिए उद्देश्य से पढ़ता है, उसके अध्ययन में सार्थकता होती है।
0: और अब आते हैं आज के इंग्लिश वर्ड पर, जो कि है frivolous, frivolous, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निरर्थक, महत्वहीन, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉट सीरियस। एंड इन सेंटेंस वी कैन से इट एज ही वेस्टेड हिज वैल्यूएबल टाइम ऑन फ्रिवोलस एक्टिविटीज इंस्टेंट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन।
1: और मेरे दोस्तों, सार्थकता हमें अपने समय, प्रयास और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है, इसलिए हमें अपने समय को फ्रिवोलस एक्टिविटीज में नहीं गंवाना चाहिए और अपने हर प्रयास में सार्थकता लाने का प्रयास करना चाहिए। और ये सभी सार्थक तभी हो सकता है जब हम पढ़ेंगे हमारे आज के दिन का इतिहास और जानेंगे क्या कुछ खास घटित हुआ था हमारे आज के दिन के इतिहास में, क्या कुछ सार्थक हुआ था। तो चलिए इसी के लिए चलते हैं वर्ष 1881 में, जिसमें अमेरिका में पहली बार टेनिस चैंपियनशिप खेला गया था।
0: इसी के साथ दोस्तों, सन 1920 में अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में रेडियो पर पहली बार समाचार प्रसारित किया गया था।
1: वर्ष 1957 में आज ही के दिन मलेशिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, और 1959 में आज ही के दिन अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी सैंडी कुफैक्स ने एक नेशनल लीग रिकॉर्ड बनाया था।
0: और वर्ष 1968 में आज ही के दिन भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। और इसी के साथ साथ भारत के उपग्रह INSAT-1B को 1983 में अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया था।
1: तो मेरे दोस्तों, आज के युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये कि शिक्षा पूरी करने के बाद, जानकारी लेने के बाद सही रोजगार का अवसर तलाशना, और इसी तलाश का एक जरिया बनती है हमारी युववाणी, जो लेकर आती है हमारे परिश्रमी युवा साथियों के लिए बेहतर रोजगार सूचना।
0: और इसी कड़ी में हमारी आज की रोजगार सूचना इस प्रकार है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन भर्ती सूचना 2 जुलाई 2026 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुल 23,757 पद हैं।
1: और इसके लिए आवेदन जो है मेरे दोस्तों वो आज से ही शुरू हो रहे हैं, और इनकी अंतिम जो तारीख है वो

0: सितंबर 2026 तक है, लेकिन ध्यान है मेरे दोस्तों, आपको मैथ्स और इंग्लिश विषयों के साथ आपका जो हाई स्कूल है वो पास आउट होना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। बाकी इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और जयशाली ने विजिट हमें अपने विनर्स को भी करना है, लेकिन उससे पहले कल का सवाल दोहरा दें।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों हमने कल आपसे प्रश्न किया था, नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसका सही जवाब है इंस्पेक्टर दिनेश सिंह।
0: और जिन्होंने इसका सही जवाब दिया उनके नाम है चंदा, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा, रवि मौर्य, प्रवीण चौहान, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश नागनपुरे, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा।
1: आप सभी दोस्तों को हमारी युवाणी की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न, जो कि है, भारत के पहले क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी स्थापना को मंजूरी किस राज्य में दी गई है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, भारत के पहले क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी स्थापना को मंजूरी किस राज्य में दी गई है।
0: तो अपने आंसर हमें भेजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youthair वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिए youthairvns@gmail.com पर। और जाने से पहले दोस्तों, एक चीज आपसे जो हम बात करने वाले थे कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जो बन चुका है कि मोबाइल, जिसमें हम पूरा दिन बिताने लगते हैं और सोचते नहीं है कि हमारा कितना सारा समय इसमें जो कह सकते हैं कि जाया हो रहा है।
1: हाँ, बिल्कुल तैयबा। और दोस्तों, जैसे सुबह जागने से लेकर रात के सोने से पहले भी स्क्रीन पर लगे रहना, क्या हमारी जिंदगी कुछ ऐसे ही हो गई है? मानो कि जिंदगी में टेक्नोलॉजी
0: जरूरी है मेरे दोस्तों, लेकिन उसका एक लिमिटेड यूज करना चाहिए और इसी को कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। इसी के साथ ये भी समय हो गया है कि आप दोस्तों से विदा लिया जाए। तो जाने से पहले मेरे दोस्तों, आपकी दोस्त तैयबा
1: और जयशालिनी
0: को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ ही हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेल खंड और ये खंड पर रेल सेवा के शुरुआत बदे बहराइच जिला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भेले। ये मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि ये रेल सेवा के नाते अब बहराइच क्षेत्र का कनेक्टिविटी और यू बढ़िया हुई।
1: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय रेल आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल जरिया से शामिल भेले। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पालो कार्यक्रम में मौजूद रहले। सरकार देश में चिप विनिर्माण तंत्र के बढ़ावा देवे बदे 1,27,000 करोड़ रुपया के बजट के साथ ही सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरका फेरा के अधिसूचित कई दयाले हवे। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले कि ऐसे आवे वाला बरिस में दुनिया भर का सेमीकंडक्टर बाजार में भारत का हिस्सेदारी करीब 10% हो सकेला।

0: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन एक के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: नेपाल में बाढ़ से मरे वालन का संख्या बढ़ के 903 हो गई है। 4247 से बेसी लोग अब इन लापता बाटे। सज्जो आठ गो प्रभावित जिला में राहत और बचाव अभियान तेजी से चली रहा है। एगो रिपोर्ट।
2: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। भारतीय बचाव दल चिले में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण वाला इलाकन में तेज वर्षा के नाते बिहार में गंडक और कोसी नदियन का जलस्तर बढ़ गई है। नदी के बहाव के नियंत्रित करे बदे वाल्मीकि बैराज का सज्जो 36 गेट और कोसी में बीरपुर बैराज का 56 में से 25 गेट खोल दिया गया है। कौशाम्बी जिला के पुरा मुफ्ती थाना इलाका के मोहम्मदपुर गाँव में आज एगो पटाखा फैक्ट्री में भई भीषण धमाका में 3 लोग इनका मौत हो गई जबकि 15 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। वहां के जिलाधिकारी अमित पाल बताऊंगे कि प्रशासन और पुलिस का टीम मौका पर पहुंच के राहत कार्यान में जुट गई है।
3: कौशाम्बी के बॉर्डर की एक घटना है। लगभग 10:40 बजे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगभग 3 की मृत्यु की सूचना है। बाकी अभी उपचार चल रहा है और राहत कार्य भी जारी है।
1: हापुड़ जिला में बीतल रात गंगा एक्सप्रेसवे पर एगो सड़क हादसा में 4 लोगों का मौत हो गई। बदायूं से दिल्ली की ओर जा रहा एगो कार सिंभावली थाना इलाका का हाजीपुर गांव के लगे बेकाबू होकर पलट गई। हादसा में कार में सवार 4 लोगों का उही झुक में मौत हो गई जबकि एगो किशोर गंभीर घायल हो गई है। सूचना पहुंचते पुलिस घटनास्थल पर पहुंचलस और शवन के पोस्टमार्टम बदे भेज दियालस। ये हादसा में घायल किशोर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गई है। प्रदेश भर में हो रहा बरखा और बैराजन से पानी छोड़ने के नाते कई गो नदियन का जलस्तर बढ़ रहा है। बलिया और फरुखाबाद में गंगा नदी खतरा के चिन्ह से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने के संभावना के देखत जिला प्रशासन 61 बाढ़ राहत शिविर 21 गो बाढ़ चौकी और 198 नाव का व्यवस्था कैले हवे। वहां गंगा नदी चेतावनी के चिन्ह के लगे पहुंच गये हो। इधर गोरखपुर और आसपास के इलाकन में आज दोपहरिया बाद से रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी है। ये बीच मौसम विभाग राज्य भर में 5 सितम्बर ले कहीं कहीं भारी बरखा का चेतावनी दे हले हवे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष व कल मंगलवार यानी 1 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित जसराज का गायन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:30 पर। बेगम अख्तर की गाई गजलों का आनंद आप उठा सकेंगे रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई देवता दीन सरोज के गाय लोकगीत के साथ ही सुनेंगे प्रोफेसर कल्याण धड़े से सतीश कुमार यादव की बातचीत। विषय होगा कृषि प्रसार में ग्रामीण जागरूक नेतृत्व की भूमिका। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे अब से थोड़ी देर में यानी 6:10 पर। शाम 7 बजे शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में रात 8

11:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में और रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। और अब एक नज़र कल मंगलवार यानी 1 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर, दिन में 12:45 पर और सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप

0: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे मिताली सिंह की गायी गजलें, और इसी कार्यक्रम में यानी सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिएगा स्नेहा अवस्थी के गाये भजन। शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे सूबेदार यादव और साथियों के गाये लोकगीत का। इन्हीं के गाये लोकगीत आप दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे। युवा साथी अपने कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:15 पर फिल्म संगीत के साथ ही सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और अर्णव पांडे का काव्य पाठ। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाने तराने आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 से। बहने अपने कार्यक्रम अग्नैया में दिन में 1:15 पर गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी नम्रता दीक्षित से की गई बातचीत, जिसका विषय होगा कुपोषण की समस्या और समाधान। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा 11 बजे से। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 8:45 से। गुड मॉर्निंग बनारस ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर सुनिएगा डॉक्टर प्रतिभा राय से एक जानकारी, विषय होगा जन्मजात हृदय रोग, कारण और बचाव के उपाय। विचार बिंदु का समय होगा सुबह 6:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आपको सुनवाएंगे सुबह 6:10 पर। सुबह 6:05 पर सुनिएगा दिनेश कुमार सिंह से एक जानकारी, विषय होगा पपीते की बागवानी। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष व कल मंगलवार यानी 1 सितंबर 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ
4: 0542227658। प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
5: हम गवन मना ही जई बे बिनार झूलनी, हम गवन मना ही जई बे बिनार।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चश्मे बद्दूर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है यशुदास और हेमंती शुक्ला ने। गीत इंदु जैन का है, संगीत राजकमल।

0: कहां से।
1: चश्मे बद्दूर फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में। गीत इंदु जैन का था, संगीत से सवारा था राजकमल ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बंजो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: का हो लाजो बहन, का हाल चाल भाई?
1: हाल चाल देखा भैया, सब ठीक हो? आपने खेती किसानी में भी देखा सब कुछ बढ़िया चलत हो?
0: अच्छा तो खेती किसानी में धान बढ़िया बाय?
1: हाँ एकदम, देखा बरखा बुन्नी हो तो धान तो एकदम हरिया गेल हो।
0: अच्छा लाजो बहन, ये है ना कि जो धान बाय ना, तो इस समय जो बरखा बुन्नी होत है उसे बड़ा हरियात भी बाय।
1: एकदम भैया।
0: आ एक चीज और बाय, लेकिन ज्यादा जब पानी हो जाला तो बड़ा नुकसान भी होला।
1: देखा जब खेत में ज्यादा पानी हो जाला तो देखा पानी तो अपने खेत खातिर बढ़िया बा, लेकिन जब ज्यादा पानी हो जाला तो देखा उसे अपन फसल खराब होए लगला।
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: यही
0: सही
1: से
0: कहलू।
1: देखा खेते में अब अपन किसान भैया लोगन धीरे धीरे पानी निकलेगा भी वो निसार बनावत हन।
0: और नहीं देखा खेत में फसल बदे, खेत बदे पानी बहुते जरूरी होला, लेकिन पानी जब ज्यादा हो जाला तो उसे बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाला।
1: एकदम भैया।
0: तो एकरे बदे अगर बारिश ज्यादा हो गई है तो किसान भैया लोग अपन व्यवस्था भी कह लेना ना कि ओकर निगार कह देव ना, पानी के निचार कह देव ना, जिससे फसल उसल नहीं खराब हो ले।
1: एकदम भैया। आ देखा खेती किसानी में हम लोगन अपने धान के बारे में बतियावत है, तो देखा अपन जो ये समय किसान का बुआई हो तो धान का बुआई हो तो किसान भैया लोगन पंच भैया लोगन करत हैं, तो देखा धान के साथे साथे लोग के मोटा अनाज का भी बुआई शुरू कर देवे के चाहिए।
0: आ लाजोन कितना बढ़िया बात कैलू हो, धान के जौन खेती करत बाड़ा उमर खाद पानी डाल के तब अस्थिर हो गए बड़ा हमारे किसान भाई। आए अपन अपनऊ हमहूनों अस्थिर हो गए बड़े जाए,
1: हाँ
0: लेकिन ओकरे साथे साथे और भी खेती जरूरी बा। अब देखा अब जैसे मोटा अनाज की खेती होला
1: हाँ हाँ
0: तो मोटा अनाज का भी खेती करे के चाही,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: सेहत
1: भैया
0: बड़े बड़ा बढ़िया होला।
1: बिल्कुल। देखा मोटा अनाज सेहत खातिर तो बढ़िया होला, और साथ में देखा एक बोए बदे

0: ज़्यादा लागत भी ना लगत, ना ज़्यादा उलझा लगला, और साथ में पानी का भी कम प्रयोग हो रहा है इसमें।
1: अच्छा, माने पानी का भी बचत हो जाले। अच्छा, मोटा अनाज के जो हम चर्चा करत हैं या जोन बात करत हैं, जो हमारे किसान भाई या भी पंचायती सुनत हुई हैं, जानत हुई हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, रामदाना, कुट्टू,
0: कोदो।
1: कोदो, कगनी, सावा, चीना, जितना भी है मोट अनाज है ना, वो शरीर बदे बड़ा पोषक युक्त बा और स्वास्थ्यवर्धक भी बा।
0: बिल्कुल भैया, देखा है मैं ये स्वास्थ्य खातिर यही लिए बढ़िया बा, कहे से कि इनमें हर तरह का पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पावल जाला। देखा है में फाइबर पावल जाला, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन भी पावल जाला, जो हम लोगन के शरीर के मजबूत बनावला और हर बीमारी से बचा के रखला।
1: अच्छा, कितना बढ़िया बात बतौलू है लाजू बहन। एक चीज़ जानत हूँ, यही से कहल जाला ना कि जे खाए बाजरा ज्वार, जे खाए बाजरा ज्वार वो कभू न होके बीमार। माने इतना उसे तरह तरह का विटामिन मिले ले कि शरीर बड़ा मजबूत हो जाला।
0: एकदम भैया, देखा अब के समय में तो घरे घरे देखा सबके केहू न केहू कौनो न कौन गंभीर बीमारी से परेशान है, कोई के शुगर हो जाता हो तो कोई के दिल का बीमारी हो जाता हो। तो देखा अगर वो अपने खान पान में मोटा अनाज शामिल कर लिए ना, तो ये सब चीज़ से बचल रही हैं ना, स्वस्थ रही हैं।
1: अच्छा, यही से कहल जाला हो लाजो बहन कि एक सबसे ताकतवर अनाज मानल जाला, और एकरे में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन भरपूर पावल भी जाला।
0: एकदम भैया,
1: तो एकर प्रयोग भी करे के चाहिए और एकर खेती भी करे के चाहिए, एकर बढ़ावा भी देवे के चाहिए। एक चीज और जानतु, हमार सरकार भी एकरे पर बहुत काफी ध्यान देले बा और किसानन के तरह तरह का मोटा अनाज बदे छूट भी देत बा, और यही से एक श्री अन्न भी कहल जाला।
0: एकदम भैया, देखा मोटा अनाज के बारे में हम लोग बात करे थे, देखा अपन जो पहले का बूढ़ पुरनिया लोगन रहलन उ मोट अनाज ही खात रहलन, और देखा कितना स्वस्थ रहलन, उनके कौनो तरह का बीमारी ना होत रहल, मतलब पैदल ही कहीं दूर दूर चल जात रहलन, उनके ना पैर में दर्द होत रहल, ना उनके घुटना में कोनो दिक्कत होत रहल। तो यही से देखा मोटा अनाज हम लोगन के भी खाए शुरू कर देवे के चाहिए। अपने गाँव के लोग तो मोटा अनाज का पैदावार भी करत हन और खाद भी हैं,
1: तो वही से सेहत भी तो ठीक बा। अच्छा, एक चीज कहल जला जानत हो कि स्वाद से ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य बा, माने अपन जो स्वास्थ्य बा वो सही बा, तो स्वाद थोड़ा कमो मिली तब वो ठीक बा।
0: बिल्कुल भैया,
1: अगर स्वाद के पीछे नहीं जाएगी चाहिए ना, उसे काफी नुकसान भी होला।
0: एकदम भैया,
1: आ एक चीज और हो लाजू बहन।
0: हाँ का भैया।
1: अच्छा देखा, बहुत कुपोषण का भी समस्या रहा, तो जोन हमन के मोटा अनाज है स्वास्थ्यवर्धक भी होला और ये कुपोषण से लड़े का क्षमता भी विकसित कराला।
0: बिल्कुल भैया,
1: ये बदे इसे बहुते बहुते फायदा बा।
0: जो चावल हो, गेहूं हो, ये सब तो रोज घर में बनत हो, लोग खात है।
1: हाँ।
0: लेकिन ये कुपोषण मतलब कहीं ना कहीं पोषक तत्व कमी रह जाता हो शरीर में, तो यही से मोटा अनाज खेले से देखा शरीर में कौनो तरह का पोषक तत्व का कमी न रह जाए पाई।
1: बिल्कुल सही कह लो। एक चीज और है लाजो बहन, जानत हूँ कि देखा जोन मोटा अनाज का जब किसान भैया लोग खेती करे ना, तो मन बीज और दवाई का भी मात्रा बहुत कम लगल है, कि तो फायदा की बात हो कि नहीं।
0: हाँ, बिल्कुल, में रासायनिक खाद का जरूरत नहीं पड़ला।
1: बिल्कुल सही कहलू है, और साथे साथे जानत हो सिंचाई बहुत ज्यादा, अगर पानी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कितना ही फायदे का खेती हो कि नहीं।
0: एकदम भैया, बिल्कुल फायदे का खेती हो, कहाँ से दिखाई में न रासायनिक खाद का जरूरत पड़ेगा ना पानी का, और कम मेहनत में भी उग जाला, और साथे में देखा जो जमीन ज्यादा उपजाऊ ना हो उनमें भी अच्छा पैदावार देला।
1: अच्छा एक चीज और डॉक्टर भैया लोगों ने एक बात और कहा ना, कि जो मोटा अनाज हो ना, जिके शरी अन्न भी कहल जाला, ओमन फाइबर पावल जाला। तो फाइबर जौने भी अन्न में पावल जाला, डॉक्टर भैया लोग हमन के बत कहीं बतियावन भैया कि जौने अन्न में फाइबर पावल जाई, वो पाचन बदे मतलब पचे बदे बड़ा बढ़िया होला।
0: बिल्कुल भैया,
1: एक तो उपयोग करे के चाहिए ना।
0: बिल्कुल, देखा भैया अपने गांव में तो सब भैया लोगन बहनी लोगन मोटा अनाज का सेवन करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देखा शहर में भी लोग देख के सीख गए हैं कि मोटा अनाज अपने खान पान में जरूर शामिल करे के चाहिए, छोटे लेकिन बच्चन हैं उनके भी खियाएं ताकि वो स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल, मोटा अनाज खेले से अपन सेहत भी बढ़िया रहे और कौनो रोग भी नहीं होला, बियाद भी नहीं होला, और जो रोग बियाद कोनो नहीं हुई लाजो बहनी ना, तो जानत हो का होई कि डॉक्टर के पास नहीं जाए कोई, और डॉक्टर के पास जाए के बाद शरीरियो नुकसान होले और पैसों खर्चा होला।
0: एकदम दिखा, ऐसे में मौसम भी ऐसा चल रहा लो बरखा बुन्नी का कि मैं मने हाली हाली बीमार हो जाता है, तो जब आप मोटा अनाज खेबा तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रही और आप एकदम स्वस्थ रहबा, तो ना ही आपके डॉक्टर के पास जाए के पड़ी और ना ही आपका

0: पैसा खर्चा होई,
1: अच्छा
0: इससे आपका
1: जानत हो,
0: बचत होई।
1: शुगर के साथ साथ हृदय रोग, पाचन एनीमिया, कैंसर कैंसर जैसन भयंकर बीमारी भी अब होते, आ ई मोटा अनाज समझा कि ये कुल बदे राम बाण हो।
0: एकदम भैया, देखा भैया बात बात कही तो हम लोग करत है भैया लोगन से, लेकिन देखा आप जानकारी कभी बात अपने पंच भैया लोगन के सुनवा देवल जाए।
1: अच्छा तो बात बात कही तो हमन को होत रही, लेकिन आज के बतकही में कृषि प्रसार में ग्रामीण जागरूक नेतृत्व की भूमिका के बारे में प्रोफेसर कल्याण घड़ेई और सतीश कुमार का हमन बतकही सुनल जा, और पंच भैया भी सुना।
0: सुनिए।
2: प्रोफेसर कल्याण घड़ेई, आप विभागाध्यक्ष हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। आज आप हमने उनके कार्यक्रम में आयल हैं और आज आपसे हमने लोग जानल जाए कि कृषि के प्रसार में, या कह लो कि ओकरी प्रचार प्रसार में, जो जागरूक ग्रामीण है, जो गांव में रहे वाला मनई है, वो कैसे भाई इमें सहयोग कर सके ना, उनका नेतृत्व कैसे बढ़िया हो सकेला अपने समाज बदे, अपने खेती किसानी बदे, आपसे यही विषय पर जानकारी लिहल जी। सबसे पहले हमने के कार्यक्रम में आपका प्रोफेसर साहब स्वागत है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो प्रोफेसर साहब, आप हमारी भैया लोग के ई बताई कि जे जागरूक मनई है गांव गिराव में, तो वो कैसे अपन नेतृत्व कर सकेला, या अपन कैसे योगदान दे सकेला कृषि के प्रचार प्रसार में, या किस कृषि में सूझबूझ के कहल जा, तो एकरी विषय में तनी हमारी भैया लोग के बताई।
3: जी बहुत अच्छा प्रश्न है। आप किसी समाज का विकास के लिए एक नेतृत्व का आवश्यकता होता है,
2: जी
3: किसी राष्ट्र का विकास के लिए नेतृत्व का आवश्यकता होता है,
2: बिल्कुल
3: ऐसे ही वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक तकनीक का विकास के लिए भी एक अच्छा नेतृत्व आवश्यकता होता है। इस प्रकार इसी कड़ी में हमें किसान के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए भी एक अच्छा नेतृत्व का आवश्यकता है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा जे गांव में हमारे बहुत सारे ऐसे किसान मित्र हैं, किसान भाइयों हैं, बहन हैं, जो कि तकनीक खूब अपनाते हैं और दूसरों को भी तकनीक अपनाने के लिए मदद करते हैं। तो हमें ऐसे नेतृत्व को पहचान करना है और ऐसे नेतृत्व का मदद लेके हम कृषि कार्य को और विकासशील करना है, गतिशील करना है।
2: जो आप विकास गतिशील का बात बताओ थे, तो इसमें आप हमारी किसान भैया के ये भी बता दें कि एकर आवश्यकता कहे है अपने किसानी में, अपने खेती बाड़ी में, इससे का लाभ लोग के मिल सकेला।
3: जी मैं ये कहना चाहूंगा जो एक जागरूक नेतृत्व का अर्थ ऐसा है जो स्थानीय व्यक्तियों से है, जो गांवों की समस्याओं को, आवश्यकताओं और अवसर को समझते हैं, तथा किसानों को सही जानकारी, नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़कर विकास की दिशा में प्रेरित करते हैं। तो हमें गांव में कृषि नेतृत्व का आवश्यकता बहुत ही जरूरी है।
2: अच्छा प्रोफेसर साहब, देखे मैं बोला कि भाई अभी भी है कि मान ली कोई अपन गाय बछरू भी खरीदे जात है, या कह जाओ कि कृषि यंत्र भी खरीदे जात है, तो वो अपने गांव से जागरूक लोगन के ले जाला, या कह जाओ कि जे एकर सोच समझ रखेला ओके भी लेके जाला, तो वो अगर ऐसन कोई नेतृत्व कैल चाहत है, या कह जाओ कि अगर ई अपन सूझबूझ बढ़ावल चाहत है, तो उमे का गुण रहे के चाहिए, एकरी बारे में तनी बताई।
3: एक अच्छा किसान जो होते हैं वो हमेशा प्रगतिशील होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं, तो यूजुअली लोग उनको विश्वास करते हैं। गांव में जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, लोग उनको विश्वास करते हैं, तो उनके पास वो विश्वसनीयता रहना चाहिए और वो लोग अच्छा संचारक होते हैं, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटर हैं, वो अच्छा संचारक होते हैं, प्रेरक, उनका विचार प्रेरकदायी होता है, दूसरों को प्रेरणा देते हैं और वो लोग परिवर्तनकर्ता भी होते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और वो लोग प्रभाव विस्तार करते हैं, प्रभावक हो सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं और गांव लोगों को मिलके, गांव लोगों का साथ एक अच्छा टीम, अच्छा ग्रुप बना सकते हैं, ताकि वो लोग को तकनीक सीखे, तकनीक जाने, तकनीक परखे और तकनीक को अंगीकार करें।
2: तो ये कौन कौन तकनीक लोग अपने अंदर एक कह लो कि समाहित करें या लावें अपने अंदर में?
3: अपने अंदर में जैसे गांव में आप जाएंगे, बहुत लोग का एक स्वतः प्रभुत्व एक मनोवृत्ति है।

0: वो स्वतः प्रभुत्व मनोवृत्ति से वो लोग आगे आ जाते हैं। जैसे मेरा ये अनुभूति है, मैं जब गांव जाता हूँ मेरे आजू बाजू में किसान आ जाते हैं, साहब कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग को क्या फायदा मिलेगा, तो इससे हमें पता चलता है वो लोग कृषि का संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं, वो लोग उसमें आना चाहते हैं। तो उनको हम लोग को, ऐसे लोगों को हम लोग को पहचान करना है और ऐसे लोगों को, लोगों का माध्यम से हमें कृषि तकनीक को आगे विस्तार करना है। जैसे भी आप जानते होंगे हमारा आजू बाजू में आसपास पड़ोस एरिया में काफी कृषि विभाग का ऑफिसर हैं, कृषि विभाग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो लोग भी वही काम करते हैं जो प्रभावशाली किसान है, जो युवा वर्ग खेती में इंटरेस्टेड हैं, जो महिलाएं खेती में इंटरेस्टेड हैं, उनको बुलाते हैं और उनका माध्यम से खेतीबाड़ी का प्रचार प्रसार करते हैं।
1: प्रोफेसर साहब, यहाँ आपसे एक और बात हम जानल चाहब कि जो आप कहते हैं कि युवा वर्ग या गांव के जो जागरूक है वो खुद से अपन उमे इंटरेस्ट का बात करते हैं कि जागरूक करेला ले आवेला, तो इमें का रहे के चाहे, लोग कैसे सोचे कि भाई हमरा के और बुद्धिमान बने के है अपनी खेती बाड़ी के लेके अपने समाज के प्रति, तो एक बारे में बताए और कैसे लोग इमें आगे बढ़ा एक बारे में थोड़ा बताए।
0: जी देखिए, दुनिया बहुत आगे निकल चुका है तकनीक को लेकर, टेक्नोलॉजी तकनीक को लेकर, कृषि को लेकर, शास्त्र को लेकर, गणित लेकर, विज्ञान को लेकर, दुनिया बहुत आगे निकल चुका है। इवन कृषि को देखिए, बहुत ऐसे देश हैं जो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और कृषि को हम नहीं छोड़ सकते।
1: बिल्कुल,
0: कृषि हमारा देश का आधार है और हमारा देश का जो इकोनॉमी है, अर्थ है, आर्थिक स्थिति है, वो कृषि आधारित है। जेहेतु कृषि हमारा जो मूलभूत सुविधा का सब कुछ कृषि से हमको मिलता है, हमारा इंडस्ट्री है, हमारा शिल्प है, हमारा कपड़ा है, हमारा खान पान है, सब कुछ कृषि से है। कृषि को छोड़ देंगे हम कहीं नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये जो युवा वर्ग है वो लोग को कृषि को पहचाने और कृषि कार्य को आगे लेकर चले,
1: मैंने वो दिशा में जरूर आप अपने आप के प्रेरित करें लोग और आगे बढ़े। अच्छा, ये बताएं कि जैसे नया नया तकनीक अपने कह जाओ कि खेती बाड़ी में आवत है, अपने सरकार की तरफ से भी आवत है, जैसे मान ली कि बहुत लोग ऐसा ऐसा हल भी आवत है कि ओकर प्रयोग करे में थोड़ा बहुत कतवाही कहल जा सके या ना समझी भी हो सकेला कि भाई हम उतना ना कर पावत है, उतना ना समझ पावत है, तो उन लोगन के लोग कैसे गांव के जो युवा वर्ग है या जो होशियार चलहाक लोग है, जो समझदार है वो यंत्र के बारे में, तो उन लोग कैसे आके उनको प्रेरित करें या उनके बारे में कैसे लोग बताए।
0: जी आप सही बताए हैं जी, अभी हमारा देश में सरकार का तमाम, भारत सरकार का तमाम योजनाएं हैं, जैसे इरिगेशन को लेकर, सिंचाई को लेकर, सिंचाई को लेकर तमाम योजनाएं हैं, बैंक संबंधी तमाम योजना है, सब्सिडी संबंधित तमाम योजनाएं हैं, तो इसका बारे में जो जागरूक किसान है वो तो जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जो किसान भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गांव में निचला पायदान पर है, उनको ज्यादा जागरूकता नहीं है। तो जो हमारे किसान भाई, जो युवा वर्ग, जो भाई बहन थोड़ा आगे निकले हैं, जानते हैं, उनको थोड़ा हेल्प करें, उनको मदद करें, ताकि वो लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे लेंगे। जैसे कि आप बताएं सिंचाई के क्षेत्र में
1: जी,
0: बहुत अच्छा सब्सिडी है, अच्छा सब्सिडी है, लेकिन जो जानकार हैं वो ले रहे हैं, जो जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है वो लोग को कर नहीं पा रहे हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, बैंक में जाके किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है, बैंक ऑफिसर का साथ बात करना है, उसका सारे सुविधा के बारे में जानकारी लेके उसको अंगीकार करना है, अपनाना है, ये बहुत अच्छी बात होगा। और एक है जैसे फसल बीमा योजना है भारत सरकार का,
1: बिल्कुल
0: प्रधानमंत्री का अति प्रिय योजना है, और जो किसान जानकार है वो उनको फायदा मिल रहा है, लेकिन जो किसान को जानकारी नहीं है उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है।
1: इनमें भी जो गांव का होशियार चलाक लोग हैं उन लोगों को मदद करें, उनका नेतृत्व कर सके ना कि भाई देखो अगर हमने लोग फसल लगेले है तो भाई कोई आपदा में या कोई किसी को तरह से नुकसान हो जाता तो कम से कम बीमा रही तो वो फसल का उस सुरक्षित रहे, ओकर हमनी के मूल्य भी मिल सकेला।
0: खाली उतना नहीं, मैं ये बोलूंगा अगर आप गांव में अच्छा नेतृत्व करते हैं तो हमारा देश में ऐसा व्यवस्था है
1: जी,
0: जो कि आपका नेतृत्व को पहचानते हैं और आपका नेतृत्व को पुरस्कार भी देंगे। आप एक तो फायदा होगा क्या, आप किसी को मदद कर सकते

0: ये बहुत बड़ी बड़ी बात होगा किसी को मदद करना, किसी को मदद कर सकते हैं। दूसरा है आपका मदद को सरकार भी पहचान सकते हैं और वो आपको भारत सरकार स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कार भी मिल सकता, तो वो आपका व्यक्तिगत विकास होगा, आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। तो अच्छा लीडरशिप, अच्छा नेतृत्व एक अच्छा व्यक्तित्व का भी विकास करता है। तो मैं आह्वान करूंगा हमारे जो युवावर्ग हैं गांव में हैं, तो वो एक अच्छा नेतृत्व का पराकाष्ठा दिखाएं, एक अच्छा नेतृत्व का भी विकास करें और अभी स्वयं कुछ रोल मॉडल भी बन सकते हैं। अच्छा नेतृत्व करते करते हमारे एक युवा वर्ग जो है, एक युवा संप्रदाय एक रोल मॉडल भी बन सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जितना सारे कृषि संबंधित डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, उसमें भाग ले सकते हैं। और किसान किसान के लिए जितना प्रशिक्षण केंद्र है वहां जाके किसान ग्रुप को लेकर जाके वहां प्रशिक्षण दे सकते हैं और खुद प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं और एक दूसरे के लिए एक बड़ा उदाहरण भी बन सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो मैं तो आज का दिन में युवा वर्गों को आह्वान करूंगा क्योंकि ये देश युवा वर्ग का देश है। आप जानते हैं पूरा ये धरती पर, पूरा ग्लोब में धरती पर जितना बड़े बड़े क्रांति हुआ है ये युवा वर्ग की है
1: जी।
0: तो युवा वर्ग का ताकत बहुत बड़ा ताकत है हर क्षेत्र में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अगर वो ताकत को हम कृषि क्षेत्र में लगा दें, आप सोचें कितना बड़ा क्रांति आने वाला है। तो मैं आह्वान करूंगा हमारे युवा वर्ग ये नेतृत्व को स्वीकार करें, ये नेतृत्व को अपनाएं और कृषि क्षेत्र में नया पहचान बनाएं।
1: प्रोफेसर साहब, आप तो भाई कहल जाओ कि कृषि प्रसार शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष भी बानी और ये विभाग में भाई कृषि का प्रचार प्रसार भी कल जला, कैसे कृषि करे के है, कैसे कृषि में अच्छा अच्छा तकनीक भी आ सकेला और आवत हो तो कि कैसे लोगन तक हमनी को पहुंचावल जा। तो ये कड़ी में और भी तनिया हम आपसे और जानल चाहब कि जो युवा वर्ग है या जो गांव का जानकार लोग हैं तो कौन कौन सी खेती कर सके ना जोना से लोग और प्रेरित हों
0: जी। हमारे देश में जो खेती अभी चल रहा है, परंपरागत खेती हमारे सामने है, तो बहुत सदियों से हम ये काम करते आ रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन ये अभी एक अच्छा नेतृत्व का हम चाहते हैं ताकि जो कुछ जो कहते हैं भीड़ से हटके ऐसा कुछ काम किया जाए, जैसे कुछ विदेशी फल, विदेशी सब्जियां और नया नया वेरायटी आजकल आ रहा है, नया नया वेरायटी किस्म।
1: अच्छा।
0: हाँ, नया नया वेरायटी आ रहा है। तो बहुत प्रकार का जैसे पशुधन को ले लीजिए, तमाम नस्लों आ रहे हैं, कृषि में नया नवाचार आ रहा है, सरकारी योजनाएं तमाम है। तो ये सारे चीजों को जानकारी हम लें, जैसे फूल का खेती
1: जी,
0: धान गेहूं खेती छोड़ के हम लोग फूल का खेती भी कर सकते हैं, इसमें अच्छा अवसर है। उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूं, काशी बनारस, बनारस में इतना देवताओं का चर्चा है। हाँ। देवताओं मानते हैं, अभी फूल का डिमांड ज्यादा होगा
1: जी।
0: तो अगर फूल व्यवसाय हम करें, फूल का खेती करें, हमें अच्छा फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: जैसे मशरूम हो गया, मशरूम एक नया टेक्नोलॉजी है, नया फूड है, जिसमें आज हर जगह में मशरूम आजकल खान पान में शामिल है। तो मशरूम का खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अब कहा जाए तो कम जगह में भी पैदावार
0: कम जगह उत्पादन हो सकता है, आपका घर में भी कर सकते हैं, छत में उगा सकते हैं मशरूम, बहुत न्यूट्रिशियस है, अच्छा है।
1: हाँ। जी, तो अगर ये विधि से हमनी का युवा वर्ग या जे जानकार किसान है, अपने गांव गिराव के जे भी लोग हुआ, उनके थोड़ा कहल जाओ कि उनका नेतृत्व कर सकेला, उनके समझा सकेला, उनके खेती की तरफ प्रेरित कर सकेला और खुद भी बढ़िया से बढ़िया खेती करके लोगों के कहल जाओ कि एक राह दिखा सकेला, एक खेती में
0: जी, जी,
1: आगे बढ़े का उम्मीद दिखा सकेला। तो प्रोफेसर कल्याण घड़ेई जी, आप हम लोग के कार्यक्रम कृषि जगत में आईनी और इतना बढ़िया जानकारी देनी, एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लजो बहन।
3: हाँ भैया।
2: देखा आज के पंचायती के बतकही में कितना बढ़िया बतकही भइल है प्रोफेसर कल्याण घड़ेई से सतीश कुमार यादव के बाद। एक चीज और है, देखा खेती किसानी हमन कहल जाला और खेती किसानी में जौन बीज हो, चाहे दवाई हो, चाहे माटी का सेहत का बात हो, तो ओकरे संबंध में हमन अच्छी से जानकारी लेवल जा और जिसे कृषि विभाग का तरह तरह की योजना भी बानी, तो योजना से हमन के लाभ भी लेवल जाए, जौन सरकार व्यवस्था बनौले बा, प्रचार करत बा, प्रसार करत बा, जागरूक करत बा, तो ओकर लाभ भी लेवे के चाहिए। अच्छा, लाभ

0: से फायदा ये होला कि जे बढ़िया करी ओकर देख करके दूसर किसान भैया भी लोग बढ़िया करे ना, होला ना कि जौन किसान भैया समय से बीज रुपाई कर देलन तो ओकरे बाद भैया और भी किसान सोचे ना कि भैया उनकर तो पहले पहले हो गल और चला हमनु समय से कह
1: एक
0: देवल
1: दूसरे से देख के सीखलन।
0: सीखना, तो ये तो होए के चाहिए। अच्छा तो ये कहत ली है कि बात बात कही तो हमन को हो गई
1: बिल्कुल
0: और किसान
1: भैया।
0: भैया पंच भैया भी लोग सुनना, और हमन के पंचायती में जब तक मर मैसाइन नहीं होला तब तक कुछ आनंद नहीं आवला।
1: बिल्कुल भैया। तो देखा पंच भैया लोगन के नीचे का गीत सुनवा देवल जाए, देवता दिन सरोज का
0: बिल्कुल
1: बजरे का।
0: सुनाए दा बहनी।
2: हमरे भैया एक देश का किसान।

0: देखा देवता दिन सरोज का कितना बढ़िया कजरी गीत रहेल है। आह्वान के पंचैती में जब तक गीत गौनई देशभक्ति गीत हो, चाहे किसानी गीत हो, चाहे कजरी गीत गौनई नहीं
1: एकदम
0: होले ना,
1: भैया,
0: तब तक मन गदगद नहीं होला।
1: एकदम
0: आ
1: भैया।
0: हमारे पंच भैया भी काफी लोग सुने ना, आ एक जोहत भी रहे ना, जानत
1: हाँ
0: हो कि
1: बिल्कुल
0: नहीं।
1: भैया। हाँ
0: अच्छा गीत गौनई तो हो गई, हमारे पंच भैया भी लोग सुनना। अच्छा ये बताओ आप, धीरे धीरे चले के भी बेला होते तो काल कहाँ सुनवाओत हो।
1: देखा भैया, कल सवेरे जो 6:05 पे खेती की बातें में अपने पंच भैया लोग के खातिर लेके आवल गए लो पपीते का बागवानी जानकारी दियन किन दिनेश कुमार सिंह। देखा संध्या के जो कृषि जगत कार्यक्रम होला ओकरे बारे में बुझान भैया तू बता दा।
0: तो जरूर हम बता रहे थे कल सांझी के 6:30 पर अपने कृषि जगत कार्यक्रम में, बुधवार 2 सितंबर 2026 के आधुनिक कृषि यांत्रिकीकरण और उसका प्रबंधन के बारे में डॉक्टर आयुष जानकारी दी हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: हमारे पंच भैया भी सुनिए और हमनों भी सुनल जाई और जानकारी लेवल जाई। और कहते लिए लाजू भविन
1: हाँ का
0: कि
1: भैया।
0: देखा भाई अब बरखा बुनी के समय हो, अब बड़े सावधानी से निकले के भी चाहिए और जाए के भी चाहिए।
1: बिल्कुल भैया।
0: खेते डाणे जाए तो लाठी डंडा भी ले ले रहे, टार्च भी ले ले रहे,
1: हाँ
0: अब बारिश का मौसम भी है और छाता भी ले ले रहे, तो
1: बिल्कुल
0: ये
1: भैया।
0: सावधानी से भी निकले के चाहिए। का
1: हाँ
0: कहत हो।
1: एकदम भैया। हाँ देखा जे भैया लोगन मोटरसाइकिल से जाते हैं वो भी देखा थोड़ा आराम से चलाए, नहीं बहुत ज़्यादा रफ्तार में चलेले से देखा गिरे का डर रह रहा
0: नहीं कितना
1: पानी
0: बढ़िया
1: में
0: बात कह लुआ, यही से कहा जाला कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी,
1: घटी।
0: के
1: बिल्कुल
0: वजह
1: भैया।
0: अपने देह के बड़े संभार करके चले के चाहिए और गाड़ी घोड़ा भी चलाओ के चाहिए बड़े
1: बिल्कुल
0: संभार
1: भैया।
0: करके, और समय बेला से अपने घरे भी जाए चाहिए। यही से कहा जाला कि जिसे समय से कोनो काम करे के चाहे, जिसे अमन समय से आवल जाला तो समय से जाए के भी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो अब घड़ी के सुई कहत है कि चले के बेला हो गई
1: बिल्कुल
0: है,
1: भैया।
0: तो अब पंच से भैया से यमन इजाजत लेवल जाए। तो
1: पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में राजा और रंग फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने राजा और रंग फिल्म का ये गाना।

राजा और रंग, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है मन की आंखें। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मन की आंखें, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब कार्यक्रम में अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, पड़ोसन फिल्म का। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत आर टी बर्मन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

पड़ोसन फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सवारा था आर डी बर्मन ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना मुगलसराय जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनू कुमार, जिनके पिता का नाम है राजेश्वर प्रसाद, पता है भोगवार, थाना मुगलसराय जनपद चंदौली, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने नीले रंग की हाफ पैंट और टी शर्ट पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना मुगलसराय जनपद चंदौली, मोबाइल नंबर 9454457682 और 9454403187। थाना दुद्धी जनपद चंदौली से प्राप्त जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनू, इनके पिता का नाम है दरोगा कुशवाहा और इनका पता है ग्राम दुन्हान, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र, ये पिछले कुछ दिनों से लापता है। इनका होलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 14 वर्ष, लंबाई 4 फीट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के सीईओ समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर, 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बहराइच में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी विशेष गाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
5: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
4: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों को अधिक सुगम आवागमन मिलेगा और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज व्यापक रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे रेलवे जोन के अधिकारी भी लगातार राज्य के अधिकारियों और

0: विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, उन सबके साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे, उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
0: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज शुरू की गई परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान से संबंधित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी समेत अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण और अनवरत सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा पूरे एक महीने तक सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा समर्पण और कर्तव्य पथ पर लगातार 25 साल अनवरत सेवा के जो वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर पूरे एक माह तक ये सेवा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, जिसमें रक्तदान और युवाओं को और जो निसहाय लोग हैं उनकी सबकी मदद करके हम गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाएंगे।
0: प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के अलावा 100 मीटर के दायरे में 8 मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने बताया कि मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए कई जेसीबी मशीनें लगाकर तलाश और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार और राहत बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 2 सितंबर को मणि रामदास छावनी के 4 धाम में आयोजित होगी। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 चरणों में प्रस्तावित इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव और 2 रिक्त सदस्य पदों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि बैठक में सभी मुद्दों पर ट्रस्ट के सदस्यों की सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार 2 बदमाश आज सुबह शामली में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। इन दोनों शूटरों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 2 आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने बताया कि 4 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
3: अभी तक की जांच से यह संकेत मिलता है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्री-प्लान्ड प्लानिंग थी। शूटर्स का मोबिलाइजेशन था, हत्या के बाद का एस्केप प्लान था और सुनियोजित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शेष अपराधियों, उनके नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कार्य कर रही हैं।
0: इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की ओर से अब तक 1635 बाढ़ चौकियां और 254 बाढ़ शरणालय स्थापित किए जा चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है।

0: जिले में 24 बार चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज और कल अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
1: उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जो ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित, जिसको हम लोग कहते हैं वरुणा से लगा हुआ क्षेत्र, वहां पर बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की गई है, मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। इसमें एनडीआरएफ जो हमारी बाढ़ राहत पीएसी है उसका डिप्लॉयमेंट और जल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो ये एरिया हमारा दशाश्वमेध घाट और आसपास का, नावों का संचालन लगातार बंद किया गया है। साथ साथ में जो गंगा आरती है उसके स्थल में भी परिवर्तन किया गया है।
1: मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक। ट्रस्ट के सीईओ समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर, 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आपकी चाय।
4: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
5: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
5: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी?
5: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
4: ना भाई ना।
6: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अपनापन फिल्म के इस गाने से।

अपना अपन फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीत आनंद बख्शी का था, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने मेरे हमसफर फिल्म का ये गाना।

मेरे हमसफर इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है असली नकली, आवाज लता मंगेशकर की है, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुने असली नकली फिल्म का ये गाना।

असली नकली फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है अप्रैल फूल। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत शंकर जयकिशन ने का। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामचोर फिल्म का ये गाना।

कामचोर फिल्म का ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत इंदिवर का था, संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुने एक दूजे के लिए फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं बेगम अख्तर। आइए इनकी आवाज़ में सुनते हैं ये गज़ल, रचना मीर तकी मीर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं बेगम अख्तर की गाई गजलें। आइए सुनते हैं इनकी अगली गजल, रचना है अली अहमद जलीली की।

0: बेगम अख्तर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। इसके साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी, इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शोर फिल्म का गाना, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीत संतोष आनंद का है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में अभ्यास बन रहे थे शोर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन। आवाजें हैं यशोदास अनुराधा पौडवाल की।

साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नसीब फिल्म का। आवाजें हैं अनवर, कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: नसीब फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी अनवर, कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बिश्केक यात्रा के अवसर पर किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री बीरेंद्र सिंह यादव के साथ साक्षात्कार। आइए सुनते हैं।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किए जा रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय है 25 years of SCO together towards sustainable peace, development and prosperity. SCO मध्य एशिया और यूरेशिया का एक प्रमुख बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सदस्य हैं। भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था और तब से संगठन के एजेंडे में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे में बिश्केक शिखर सम्मेलन भारत के लिए मध्य एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। SCO सम्मेलन और भारत किर्गिस्तान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री वीरेंद्र सिंह यादव। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान यात्रा के दौरान SCO समिट में शामिल होंगे और ये 26th समिट है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये समिट भारत के लिहाज से?
3: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है, ये प्राइमरी इज टू पार्टिसिपेट इन द 26th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द SCO एंड इंडिया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ क्लाउड इन द ग्लोबल एरिना एंड इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ and India is a, one of the largest global economies growing at very fast rate, enjoys a considerable interest or I'd rather say influence amongst the other member states on what India's stand is on various issues. In that respect, everybody is looking forward to Honorable Prime Minister's statement during the SCO summit and wherein he would be highlighting what the India's priorities would be. And I think this visit is also an opportunity to strengthen our bilateral relationship with the Kyrgyz Republic and the warm and friendly ties between our two countries, which are based on historical and civilizational foundation.
2: सर, यदि भारत और किर्गिस्तान के संबंधों की बात करें तो किस तरह से आप इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे?
3: बहुत ही वार्म और फ्रेंडली पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच और बोथ द कंट्रीज शेयर अ सिमिलर ग्लोबल विजन एंड वी कोऑपरेट वेरी क्लोजली नॉट ओनली बायलेटरली बट ऑल्सो इन द मल्टीलेटरल फोरम एंड जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के देयर सिमिलर चैलेंजेस और बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट ईच अदर लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड टू कंटिन्यू इन देयर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीजंस।
2: सर, आपने जो चुनौतियों की बात की तो दोनों ही देश, भारत भी और किर्गिस्तान भी, एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें टेररिज्म भी है, सेपरेटिज्म भी है और रेडिकलाइजेशन भी है, तो किस तरह से आपस में मिलकर इनसे निपटने की रणनीति तैयार होगी?
3: हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है किर्गिज गणराज्य के साथ एंड वी कंडक्ट एनुअली अ बायलैटरल एक्सरसाइज खंजर व्हिच वुड बी हैविंग इट्स 14th एडिशन इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड वी आल्सो कोऑपरेट वेरी क्लोजली इन द capacity enhancement through participation of Kyrgyz official in the defense high tech programs and by curating a tailor

0: made courses as per their specific requirements. And the joint working group meets annually and they chalk out a plan of action. And all this is to enhance the capacities and share each other's experience to prepare for the meeting common challenges which you have listed.
1: सर किर्गिस्तान जो है वो भारत का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है. यदि हम सेंट्रल एशिया के साथ में भारत के संबंधों की बात करें तो कितना महत्व रखता है भारत के लिए किर्गिस्तान?
0: अगर आप देखें तो बिश्केक से दिल्ली 3 घंटे से कम समय लगता है थ्रू एन फ्लाइट. तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम कितने करीब हैं. और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल एशिया और किर्गिज रिपब्लिक इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में आता है. दिस इज अ वे to closely cooperate with the region and including the Kyrgyz Republic. And this engagement is through the political dialogue, through the established institutional mechanisms in the field of defense and security, enhancing the trade and economic cooperation, and also having an excellent people-to-people linkages and cultural cooperation. And Kyrgyz Republic also hosts more than 16,000 Indian medical students, and they ensure that they have a safe and secure environment to study.
1: सर भारत और किर्गिस्तान का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है संबंधों का. इसमें जो दोनों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में और क्या कदम उठाए जाएंगे?
0: 2019 के बाद जो हमारा बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर है वो पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो गया है. और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको और ऊंचाई तक कैसे ले जा सके. उसके लिए हम व्हाट आर द न्यू एरियाज वेयर वी शुड फोकस ऑन एंड लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस डेलीगेशंस दे विजिट किर्गिज रिपब्लिक. सिमिलरली फ्रॉम हियर दे पार्टिसिपेट इन वेरियस एग्जीबिशंस एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर हाउ द बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर कुड बी इंक्रीज्ड एंड हाउ द म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स कैन बी प्रमोटेड बिटवीन द टू कंट्रीज.
1: जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में. तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें और स्ट्रेंथन करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
0: The Indian diaspora always is an asset because they are the organic bridges between the two countries and they help in creating an image of the country, and we are very proud that the Indian diaspora in the Kyrgyz Republic has lived up to that reputation and they act as a facilitator or medium to enhance the people-to-people linkages.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किर्गिस्तान की ये तीसरी यात्रा है. इसके पहले भी वो 2019 में एशियो समिट में भी शामिल होने की आ चुके हैं. ये यात्रा का कितना महत्व है?
0: प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है, वो भले ही पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो. प्रधानमंत्री की यात्रा से बायलैटरल रिलेशंस को एक फिलिप मिलता है, एक सुदृढ़ता मिलती है और नए आयाम एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है. सो मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है.
1: सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान जो वर्ल्ड नोमैड गेम्स है उसके शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी का उसके शुभारंभ समारोह में शामिल होना कितना महत्व रखता है और इस पूरे रीजन के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
0: The organization of the 6th World Nomad Games is very significant for the Kyrgyz Republic because the games are returning to the Kyrgyz Republic after a little gap. And they have been preparing extensively for organization of these games. They have built a new beautiful stadium, which is the biggest stadium in the Central Asia in the form of traditional yurta. And the World Nomad Games is an opportunity for them to promote and propagate their rich cultural nomadic heritage. And there is a participation from India also, and we have a 73 strong contingent which is participating in archery, in wrestling, in other forms of game. And Honorable Prime Minister, he would be participating in the inauguration of the World Nomad Games, which is also a reflection of both the countries respecting their rich heritage, cultural heritage and way of life in case of India, which has been in existence for many, many centuries.
1: Thank you so much, sir. Akashvani Samachar se baat karne ke liye.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.

0: रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक आपके मोबाइल सेट पर। जी हां, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहां भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी रहे तू जरा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़

0: रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
1: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल

0: किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौबहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत BRICS समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with the leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi

0: Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आज़ादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज़ जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म कल SCO समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP आलमी उथल पुथल के बावजूद रवा माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुँच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक माहदे पर पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से सुबुकदोशी का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जमहूरिया किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO सरबरा इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की। बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दोतरफा तआवुन के अहम शोबों तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: यूक्रेन तनाजे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की सिमत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबरा इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनाकिद होगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौकफ का

वादा किया कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। बहरी जहाजों की आमोदरफ्त और तिजारत की आज़ादी के तहफ्फुज़ पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों और सिविल बुनियादी ढांचे बशमूल तिजारती जहाज़ों और मल्लाहों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी और जम्हूरिया किर्गिस्तान के सदर सदोर ज़ापारोव ने दोतरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोदी और आर्मेनिया के उनके हममनसब निकोल पेशिनियान ने दिफा, मईशत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। आज वस्ती एशियाई मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर आज़म मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 4 वफूद मौजूद थे। जम्हूरिया किर्गिस्तान के कल अपने दौरे के आखिरी दिन वज़ीर आज़म मोदी शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबरा इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी कल उज़्बेकिस्तान का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद बिश्केक पहुंचे थे। भारत की असल जीडीपी में माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल इसी सहमाही में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। भारतीय मईशत ने नासाजगार हालात के बावजूद तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा है। नॉमिनल जीडीपी में भी मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में 10.3% का इजाफा दर्ज किया गया है। आदाद शुमार और प्रोग्राम के निफाज की वजारत ने आज मौजूदा माली साल में अप्रैल से जून तक की पहली सहमाही में जीडीपी के तखमीने जारी किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी को मिसाली और बड़ा कारनामा करार दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कामयाबी तेल की कीमतों के दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई ताकत और मजबूती की अक्कासी करती है। इस दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस मजबूत कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी सख्त मेहनत को जाता है। वजीर खजाना ने कहा कि NDA सरकार की जानिब से की गई असलाहत और मईशत के मौसर और पायदार इंतजाम के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। खिदमात की पैदावार के इशारे ISP के तहत जून 2026 के दौरान 19 में से 18 ज़ैली शोबों में सालाना बुनियाद पर इजाफा दर्ज किया गया है। 8 शोबों में 2 हिंसे की शरह नमू दर्ज की गई है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत की जानिब से जारी करदा ज़ैली शोबा जाती आरजी ISP आदाद शुमार के मुताबिक रियल इस्टेट का शोबा 24.7% की शरह नमू के साथ सबसे आगे रहा, जबकि खुर्दा कारोबार में 18% का इजाफा हुआ। थोक कारोबार में 15.1%, इंतजामी और माविन खिदमात में 14.4% और IT और कंप्यूटर से वाबस्ता खिदमात में 13.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब फिजाई नकल हमल वाहिद जैली शोबा रहा जिसमें कमी दर्ज की गई। इस शोबे में पिछले साल की इसी मुदत के मुकाबले 6% की गिरावट दर्ज की गई। ISP एक मुकर्रा बुनियादी साल के मुकाबले में बाजाब्ता खिदमात के शोबे की पैदावार के हजम में मुख्तसर मुद्दत की तब्दीलियों को जाहिर करता है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत ने कहा कि आदाद शुमार के मियार और दायरे कार का जायजा लेने के लिए खिदमात की पैदावार के महाना इशारे आजमाइशी बुनियादों पर जारी किए जा रहे हैं। सोन नदी के पानी की तकसीम के मामले पर बिहार और झारखंड के दरमियान आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और जल शक्ति के वजीर CR पाटिल भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड के दरमियान इस माहदे से मशरकी भारत में लंबे अरसे से जारी पानी का मसला हल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस माहदे से बिहार और झारखंड के देही इलाकों में लाखों किसानों को आबपाशी के लिए पानी दस्तियाब होगा। इसके साथ ही अवाम के लिए पानी पीने का पानी भी फराहम किया जा सकेगा। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का अहम जुज है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। सदर जम्हूरिया आज दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रही थी। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा से कहा कि वो मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे और इकदार से जुड़े रहते हुए आलमी नुक्ते नजर को अपनाएं। फैशन इंडस्ट्री में खवातीन के बढ़ते हुए रोल पर जोर देते हुए सदर जम्हूरिया ने कहा कि
تقریب

0: में मौजूद तकरीबन 4000 तलबा में लगभग 85% खवातीन हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभव बनाए। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत में फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वह मुल्क के रिवायती टेक्सटाइल विरसे को जदीद बाजारों और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अपने इल्म, महारत और तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को फ़रोग देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के खर्च से सेमीकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों को जानकारी फराहम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से आने वाले बरसों में भारत आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर सनत में तकरीबन 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में उसका रोल मजीद बढ़ सकता है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में वेफर्स की तैयारी से लेकर चिप की पैदावार तक मजबूती से शामिल करने पर मरकूज है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 के तमाम 6 अहम बुनियादी अज्जा का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के शराकतदारों में इस बात का एतमाद बढ़ रहा है कि आने वाली दहाइयों में बड़ी सरमायाकारी के लिए भारत एक मौजू और पसंदीदा मकाम है। इस दौरान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA ने आज सेमीकॉन 2.0 के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए इसे सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अहम पेशरफ करार दिया। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि ये जामे हिकमत अमली भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को नुमाया तौर पर मजबूत और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को रागिब कर सकती है। इसके अलावा आला कदर वाली मुलाजमतें पैदा कर सकती है और भारत को एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकत दार के तौर पर मजीद मुस्तहकम कर सकती है। IESA के सदर अशोक चंदक ने कहा कि भारत अब अपनी साख कायम करने के मरहले से आगे बढ़कर हकीकी सलाहियत पैदा करने की जानिब गामजन है और मजकूरा पॉलिसी का तसलसल इस सफर को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगा। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद बचाव कार्रवाई में मसरूफ सिक्योरिटी एहलकारों को खसूसी आलात, लाशों के लिए थैलों, रस्सियों और हेलीकॉप्टरों की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। बावर किया जाता है कि यह सैलाब 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सरहद के करीब बर्फ और चट्टानों के तोदे गिरने के सबब आया। सैलाब ने भोटेकाशी दरिया से मुतसिल इलाकों में घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और पनबिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुँचाया। कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने इस सैलाब को गैर मामूली तबाहकुन कुदरती आफत करार दिया है। तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी एहलकार बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ है। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत के कामों और मुतासिरों की शनाख्त में मदद के लिए खसूसी टीमें तैनात की हैं। 19 रुकनी भारतीय फॉरेंसिक टीम ने कल काठमांडू में इंसानी लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट में मदद फराहम करने का काम शुरू कर दिया। लायनल मेसी ने आज बैनुल अख्वामी फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए उनका 20 साल तवील करियर इख्तिताम पजीर हुआ। उनके करियर में वर्ल्ड कप की जीत, 2 मरतबा कोपा अमेरिका का खिताब और अपने मुल्क के लिए रिकॉर्ड 207 मैच शामिल हैं। मेसी ने कहा कि रिटायरमेंट का फैसला वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद से उनके जहन में था, लेकिन वालिद की वफात ने उन्हें मजीद यकीन दिलाया कि अब लगभग रिटायर होने का वक्त आ गया है। 39 साल मेसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी एक बयान में इस फैसले का ऐलान करते हुए तस्दीक की कि फुटबॉल की तारीख से सबसे मशहूर बैनुल अक्वामी करियर्स में से एक के बाद वो अब अर्जेंटीना की जर्सी नहीं पहनेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर

0: व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आज़ादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज़ जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म कल SCO समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP आलमी उथल पुथल के बावजूद रवां माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुंच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक माहदे पर पहुंच गए हैं। और नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

चारू चंद्र की गाई ये गजल अब अभी आप सुन रहे थे, रचना थी अहमद फराज की। आइए सुनते हैं अगली गजल, डॉक्टर रमा सेन की गाई हुई।

रोने से इश्क में और बेबाक हो गए। डॉक्टर रमा सेन की गाई इस गजल के बाद आइए अब सुनते हैं पंडित विजय कपूर की गाई ये गजल।

वीआर शहर दिल का वीरान हो रहा है। पंडित विजय कपूर की गाई इस गजल के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर रमा सेन की गाई ये गजल।

कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया। डॉक्टर रमा सेन की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम कहकशा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही जय बेबिनार झूलनी, हम गवन मनाही।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वीकार किया मैंने, इस फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। शब्द रचना निदा फाजले की है, संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में निदा फाजली का लिखा ये गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी उषा खन्ना ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अब्दुल्ला फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुने अब्दुल्ला फिल्म का ये गाना।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। आवाज़ मुकेश की है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

हिमालय की गोद में इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सती सावित्री फिल्म का गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। गीत लिखा है भरत व्यास ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सती सावित्री फिल्म का गाना, जिसे लिखा था भरत व्यास ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नवरंग फिल्म का गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। शब्द रचना भरत व्यास की है, संगीत सी रामचंद्र का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

नवरंग फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, शब्द रचना भरत व्यास की थी, संगीत सी रामचंद्र का। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं काला बाजार फिल्म का गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत शैलेंद्र का है, संगीत एस टी बर्मन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

काला बाजार फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत शैलेंद्र का था, संगीत एस डी बर्मन का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जसराज का गायन। राग है धुलिया मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं केदार पंडित। हारमोनियम पर हैं अप्पा जलगावकर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन, राग था धुलिया मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे केदार पंडित और हारमोनियम पर थे अप्पा जलकावकर। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्केन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल